ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਤੁਕੀ। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਤੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹਰ ਜੀਉ, ਧੁਰ ਤੂੰ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਨ ਤੁਧ ਰਾਖ ਲਏ ਹਰ ਜੀਉ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਮਾਰ ਪਚਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈ ਹਰ ਜੀਉ, ਮਨ ਮੁਖ ਪਰਮ ਭੁਲਾਇਆ। ਹਰ ਜੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਪੈਜ ਰੱਖ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ। ਭਗਤ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਣਾਈ ਰਹਾਉ, ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਮ ਜੋਹ ਨਾ ਸਕੈ, ਕਾਲ ਨਾ ਨੇੜੇ ਜਾਈ। ਕੇਵਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਨਾਮੇ ਹੀ ਮੁਕਤ ਪਾਈ। ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਸਭ ਭਗਤਾਂ ਚਰਣੀ ਲਾਗੀ, ਗੁਰ ਕੈ ਸਹਿਜ ਸੁਪਾਈ। ਮਨ ਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨ ਆਵਈ, ਅੰਤਰ ਲੋਭ ਸੁਆਉ। ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦੈ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਭੇਦੇਉ, ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਲਾਗਾ ਪਾਉ। ਕੂੜ ਕਪਟ ਪਾਜ ਲਹਿ ਜਾਸੀ, ਮਨਮੁਖ ਫੀਕਾ ਅਲਾਉ। ਭਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵਰਤਦਾ ਪ੍ਰਭ ਜੀ, ਭਗਤੀ ਹੂੰ ਤੂੰ ਜਾਤਾ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਭ ਲੋਕ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਤੂੰ ਏਕੋ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਹਾਰ ਮਨਸਾ ਮਨੈ ਸੁਮਾਣੀ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਤਾ। ਅਚਿੰਤ ਕੰਮ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਤਿੰਨ ਕੇ, ਜਿਨ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਸਦਾ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਸਭ ਕਾਜ ਸਵਾਰਨਹਾਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਰੀਸ ਕਰੇ ਸੋ ਬਿਗੁੱਚੈ, ਜਿਨ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹੈ ਰਖਵਾਰਾ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਆ, ਮਨਮੁਖ ਭੌਂਕ ਮੂਏ ਬਿਲ ਲਾਈ। ਆਵੈ ਜਾਵੈ ਠੌਰ ਨਾ ਪਾਵੈ, ਦੁੱਖ ਮਹਿ ਦੁੱਖ ਸਮਾਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੈ ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੈ, ਸਹਿਜੇ ਸਾਚ ਸਮਾਈ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਜਨਮ ਨਾ ਛੋਡੈ, ਜੇ ਅਨੇਕ ਕਰਮ ਕਰੇ ਅਧਕਾਈ। ਵੇਦ ਪੜੇ ਤੈ ਵਾਦ ਬਖਾਣੈ, ਬਿਨ ਹਰ ਪਤ ਗਵਾਈ। ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੀ ਜਿਸ ਬਾਣੀ, ਭਜ ਛੂਟੈ ਗੁਰ ਸ਼ਰਣਾਈ। ਜਿਨ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੇ ਦਰ ਸਾਚੀ, ਦਰ ਸਾਚੈ ਸਚਿਆਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਨਾ ਮੇਟਣ ਹਾਰਾ। ਨਾਨਕ ਤਿਨਕੈ ਸਦ ਬਲਹਾਰੇ, ਜਿਨ ਹਾਰ ਰਾਖਿਆ ਉਰ ਧਾਰਾ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਦੁਤੁਕੀ। ਨਿਗੁਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਲਏ ਭਾਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਉਤਮ ਹੈ ਭਾਈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਚਿਤ ਲਾਈ। ਹਰ ਜੀਉ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਮਲਾਈ, ਗੁਣਹੀਨ ਹਮ ਅਪਰਾਧੀ ਪਾਈ। ਪੂਰੈ ਸਤਿਗੁਰ ਲਏ ਰਲਾਈ ਰਹਾਉ, ਕੌਣ ਕੌਣ ਅਪਰਾਧੀ ਬਖਸ਼ ਅਨ ਪਿਆਰੇ। ਸਾਚੈ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੁ, ਭੌਜਲ ਪਾਰ ਉਤਾਰੇ ਅਨ ਪਾਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਬੇੜੈ ਚਾੜੁ, ਮਨੂਰੈ ਤੇ ਕੰਚਨ ਭਏ ਪਾਈ। ਗੁਰ ਪਾਰਸ ਮੇਲ ਮਿਲਾਈ, ਆਪ ਛੋੜ ਨਾਉ ਮਨ ਵਸਿਆ ਪਾਈ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਈ, ਹਉ ਵਾਰੀ ਹਉ ਵਾਰਣੈ ਪਾਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਉ ਸਦ ਬਲਹਾਰੈ ਜਾਉ, ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਜਿਨ ਦਿੱਤਾ ਪਾਈ। ਗੁਰਮਤਿ ਸਹਿਜ ਸਮਾਉ, ਗੁਰ ਬੈਨ ਸਹਿਜ ਨਾ ਉਪਜੈ ਭਾਈ। ਪੁੱਛੋ ਗਿਆਨੀਆਂ ਜਾਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਦਾ ਕਰ ਪਾਈ। ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਈ, ਗੁਰਮਤੀ ਭਾਉ ਉਪਜੈ ਪਾਈ। ਭਾਉ ਕਰਨੀ ਸੱਚ ਸਾਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਈਐ ਪਾਈ। ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਆਪਣਾ ਪਾਈ। ਤਿਨਕੈ ਹਉ ਲਾਗੋਂ ਪਾਈ, ਜਨਮ ਸਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਪਾਈ। ਕੁੱਲ ਪੀ ਲਈ ਬਖਸ਼ਾਏ, ਸੱਚ ਬਾਣੀ ਸੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਭਾਈ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਹਰ ਮਨ ਵਸੈ ਪਾਈ। ਤਿਸ ਵਿਘਨ ਨ ਲਾਗੈ ਕੋਈ, ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਹਰ ਜੀਉ ਸ਼ਬਦੇ ਜਾਪਦਾ ਪਾਈ, ਪੂਰੈ ਭਾਗ ਮਿਲਾਈ। ਸਦਾ ਸੁਖ ਸੁਹਾਗਣੀ ਪਾਈ, ਅਨਦਿਨ ਰਤੀਆਂ ਰੰਗ ਲਾਈ। ਹਰ ਜੀ ਤੂੰ ਆਪੇ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਾਈ, ਗਾਵੋ ਗਾਵੋ ਰੰਗ ਰਤਿਓ ਪਾਈ। ਹਰ ਸੇ ਤੀ ਰੰਗ ਲਾਈ ਰਾਉ, ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਪਾਈ। ਆਪ ਛੋੜ ਚਿਤ ਲਾਈ, ਸਦਾ ਸਹਿਜ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਈ ਪਾਈ। ਹਰ ਆਪ ਵਸੈ ਮਨ ਆਈ,
फिर का हुक्म न जाने पाई, साक लखनी कुनारु, मन हठ कार कमावनी पाई, विण नावे कूड़ नावे कूड़ियार। से गावे जिन मस्तक पाग है पाई, पाई सच बैरागु, अनदन राती गुण रवै पाई, निरपव गुरलिभ लागु, सबना मार जीवाल दा पाई, सो सेवो दिन रात, सो क्यों मनो विसारी है पाई, जिस दी वड्डी है दात। मनमुख मैली डूमनी पाई, दरगह नाहीं थाऊं, गुरमुख होवै तां गुण रवै पाई, मिल प्रीतम साच समाऊं। एत जन्म हर ना चेत्यो पाई, क्या मुँह देसी जाई, किड़ी पवंदी मोहायो न पाई, बिख्या नो लो पाई। नाम संभालेंख सुख वसै पाई, सदा सुख शांत शरीर, नानक नाम संभाल तू पाई, अपरंपर गुणी गहीर। सोरठ महला पंजवा अंकार पहला, अष्टपदियां एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। सब जग जिन्हें उपाया पाई, करण कारण समरथ, जियो पिंड जिन साजिया पाई, दे कर अपनी वथ। जे किन कही है क्यों देखी है पाई, करता एक कथ, गुर गोबिंद सलाही है पाई, जिस ते जापै तथ। मेरे मन जपिए हर भगवंता, नाम दान दे जन अपने, दुख दर्द का हंता रहाऊ। जाकै घर सब किस है पाई, नौनिद परे भंडार, तिसकी कीमत ना पवै पाई, ऊंचा अगम अपार। जी जंत प्रतपाल दा पाई, नित नित करदा सार, सतगुर पूरा भेटिया पाई, शब्द मिलावन हार। सच्चे चरण सरेवियां पाई, ब्रह्म पहु वै नास, मिल संत सभा मन मांझिया पाई, हर कै नाम निवास। मिटै अंधेरा अज्ञानता पाई, कमल हो वै प्रगास, गुर बचनी सुख उपजै पाई, सब फल सतगुर पास। मेरा तेरा छोड़िया पाई, होइया सब की तहूर, घट घट ब्रह्म पसारिया पाई, पेखै सुने हजूर। जैत दैन विसरै पार ब्रह्म पाई, तैत दैन मरिया चूर, करन करावन समरथो पाई, सर्ब कला भरपूर। प्रेम पदार्थ नाम है पाई, माया मोह विनाश, तिस पावे ता मेल लय पाई, हृदय नाम निवास। गुरमुख कमल परगासी है पाई, हृदय हुवै परगास, प्रगट पया प्रताप प्रभ पाई, मौल्या तरत आकाश। गुरपूरै संतोखिया पाई, एहन सलागा पाऊ, रसना राम रवै सदा पाई, साचा साध सुआऊ। करणी सुन सुन जीव्या पाई, निचल पाया थाऊं, जिस परा प्रतीत न आवई पाई, सो जीअड़ा जल जाऊं। बहु गुण मेरे साहिब पाई, हौं तिस कै बल जाऊं, ओ निर्गुण यारे पालदा पाई, देन थावे थाऊं। रिजक संभाहे सास सास पाई, गूढ़ा जा का नाऊं, जिस गुर पर साचा पेटिया पाई, पूरा तिस करमाऊं। तिस बिन घड़ी न जीविया पाई, सर्ब कला भरपूर, सास गिरास न विसरै पाई, पेखो सदा हजूर। साधु संग मिलाया पाई, सर्ब रहया भरपूर, जिन्ना प्रीत न लगिया पाई, से नित नित मर दे चूर। अंचल लाई तराया पाई, भौ जल दुख संसार, कर कृपा नदर निहालिया पाई, की तोन अंग अपार। मन तन शीतल होया पाई, भोजन नाम आधार, नानक तिस शरणागति पाई, जे किलबिख काटनहार। सोरठ महला पंजवां। मात गर्भ सुख दुख सागरो प्यारे, तै अपना नाम जपाया, बाहर काढ़ बिख पसरिया प्यारे, माया मोह बधाया, जिसनो कीतो कर्म आप प्यारे, तिस पूरा गुरु मिलाया। सो आराधे सास सास माले, राम नाम लिवलाया, मन तन तेरी टेक है प्यारी, मन तन तेरी टेक,
तोद बैन अबर न करण हार प्यारी अंतर जामी एक रहाऊ कोट जन्म प्रम आया प्यारे अनक जोन दुख पाए साचा साहिब विसरिया प्यारे बहुती मिलै सजाए जिन भेटै पूरा सतगुरु प्यारे से लागे साच नाए तिन्ना पीछा छूटी है प्यारे जो साची सरणाए मिठा करके खाया प्यारे तिन तन कीता रोग कौड़ा होए प्रतिष्ठया प्यारे तिसनों उपजया तिसते उपजया सोग भोग पंचाई भुलाए अन प्यारी उतरै नहीं बिजोग जो गुर मेल उधारिया प्यारी तिन तुरे पया संजोग माया लालच अटिया प्यारी चितन आवै मूल जिन तू विसरहे पार ब्रह्म स्वामी से तन होए धूड़ बिललाट करहे बहुतेरिया प्यारी उतरै नाहीं सूल जो गुर मेल सवारिया प्यारी तिनका कहया रहया सुमूल जो गुर मेल सवारिया प्यारे तिनका रहिया मूल साकत संग न की जई प्यारे जे का पार बसाए जिस मिलिया हर विसरै प्यारे सो मुँह काल उठ जाए मनमुख ढोई न मिलै प्यारे दरगाह मिलै सजाए जो गुर मेल सवारिया प्यारे तिना पूरी पाए संजम सहज सियाणपा प्यारी एक न चली नाल जो बेमुख गोविंद ते प्यारी तिन कुल लाग गाल होंदी वासना जातियां प्यारे कूड़ न चली नाल सतगुर जिन्ना मिलायो उन प्यारी साचा नाम संभाल सत संतोख ज्ञान ध्यान प्यारे जिसनों नदर करे अणदिन कीर्तन गुण रवै प्यारे अमृत पूर परे दुख सागर तिन लंघया प्यारे भवजल पार परे जिस भावै तिस मेल लहै प्यारे से ही सदा करे समर्थ पुरख दयाल देव प्यारे भगता तिसका तायण तैस सरनाई टै पए प्यारे जे अंतर जामी जानु हलत पलत सवारिया प्यारे मस्तक सच निशान सो प्रभ कदे ना विसरै प्यारे नानक सद कुरबाणु सोरठ महला पंजवां कर दूजा अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद पाठ पढ़ियो अर वेद विचारियो निवल भुयंगम साधे रस पंच जना स्यों संग न छुटक्यो अधिक अहंग बुद्ध बाधे प्यारी इन विद मिलन न जाई मैं किए कर्म अनेका हार पर्यो स्वामी कै द्वार दीजै बुद्ध बवेका रहाउ मोन पयो कर पाती रहियो नगन फिरो बन माही तट तीर्थ सब धरती ब्रह्मयो दुबधा छुटकै नाही मन कामना तीर्थ जाय बसयो सिर करवत तर आए मन की मैलना उतर एह बिद जे लख जतन कराए कनक कामनी हैवर गैवर बहुबिद दान दा तारा अन्न वस्त्र भूम बहु अर्पे न मिलिए हर द्वारा पूजा अर्चा बंधन डंडावत खट कर मारत रहता हों हों करत बंधन मह परे आओ न मिलिए ही जुगता जोग सिद्ध आसन चौरासी ये पी कर रहे आ वड्डी आरजा फिर जनमै हर स्यों संग न गहया राज लीला राजन की रचना करया हुक्म अफारा सेज सोहनी चंदन चोआ नरक कोर का द्वारा हर कीरत साध संगत है सिर कर मन कै कर्मा कहो नानक किस पयो प्राप्त जिस बुरब लिखे का लहना तेरो सेवक एह रंग माता भयो कृपाल दीन दुख भंजन हर हर कीर्तन एह मन राता रहाऊ दूजा राग सोरठ वार महले चौथे की एक ओंकार सतगुरु प्रसाद श्लोक महला पहला सोरठ सदा सुहावनी जे सच्चा मन होए दंदी मैलना कत मन जीवै सच्चा सोए ससुरै पेईए पै वसी सतगुर सेव निसंग पर हर कपड़ जे पिर मिलै खुशी रावै पिर संग सदा सिंगारी नाउ मन कदे न मैल पतंग देवर जेठ मुए दुख ससु का डर कैस जे पिर पावै नानका कर्म मणि सब साचु महला चौथा
सोरठ ताम सुहावनी जा हर नाम टंडोले गुरपुरख मनावे अपना गुरमती हर हर बोले हर प्रेम कसाई दिन सरात हर रती हर रंग चोले हर जैसा पुरख न लभई सब देखिया जगत मैं टोले गुर सतगुर नाम दृढ़ाया मन अणत न काहू डोले जन नानक हर का दास है गुर सतगुर के गोल गोले पौड़ी तू आपे सृष्ट करता सिरजन हारिया तुद आपे खेल रचाए तुद आप सवारिया दाता करता आप आप भोगण हारिया सब तेरा शब्द वरतै उपावन हारिया गुहाओं गुरमुख सदा सलाही गुर कौ वारिया श्लोक महला तीजा हौ मैं जल ते जल मुए प्रम आए दूजै पाए पूरै सतगुर रख लिए अपने पन्ने पाए एह जग जलता नदरी आया गुर कै शब्द सुभाए शब्द रते से शीतल पाए नानक सच कमाए महला तीजा सफल्यो सतगुर सेविया धन जन्म परवाण जिन्ना सतगुर जीवन दिया मुया ना विसरै से ही पुरख सुजान कुल उधारी अपना सो जान होवै परवान गुरमुख मुए जीवन दे परवान है मनमुख जन्म मराहे नानक मुए न आखियै जे गुर कै शब्द समाहे पौड़ी हार पुरख निरंजन सेव हार नाम त्याई है सतगुर सतसंगत साधु लागो हर नाम समाई है हर तेरी वड्डी कार मैं मूर्ख लाई है हों गोला लाला तुद मैं हुक्म फुरमाई है हों गुरमुख कार कमावा जे गुर समझाई है श्लोक महला तीजा पूर्व लिखिया कमावना जे करतै आप लिखियास मुँह ठगौली पाईअन विसरिया गुणतास मत जानो जग जीवन दा दूजै पाए मुए आस जिन्नी गुरमुख नाम न चेतेओ से बहन न मिलनी पास दुख लागा बहुक अत करना पुत कलत न साथ कोई जास लोका विच मुँह काला हुआ अंदर उबे सास मन मुखा नू को ना विसई चुक गया बेसास गुरु नानक गुरमुखा नू सुख अगला जिन्ना अंतर नाम निवास महला तीजा से सैन से सजना जे गुरमुख मिलै सुपाई सतगुर का पाणा आन दिन कर है से सच रहे समाई दूजा भाई लगे सजन न आखिया न जे अभिमान करे बेकार मनमुख आप सवार थी कारज न सकें सवार नानक पूर्व लिखिया कमावना कोई न मिटन हार पौड़ी तुदे आपे जगतो पाई कै आप खेद रचाया त्रैगुण आप सिरजया माया मोह बधाया विच होमै लेखा मंगिया फिर आवै जाया जिन्ना हर आप कृपा करे से गुर समझाया बलहारी गुर अपने सदा सदा घुमाया श्लोक महला तीजा माया ममता मोहनी जिन बिनदन तां जग खाया मनमुख खादे गुरमुख उबरे जिन सच नाम चित लाया बिन नावै जग कमला फिरे गुरमुख नदरी आया धंधा करत्या नहीं फुल जन्म गवाया सुखदाता मन ना बसाया नानक नाम तिना कौ मिलया जिन कौ दुर्लिख पाया महला तीजा घर ही मह अमृत भरपूर है मन मुखा साधन पाया जो कस्तूरी मृग न जाने भ्रम दा भ्रम भुलाया अमृत ताज विख संग्रह करतै आप खुआया गुरमुख बिरले सो जी पाई तिना अंदर ब्रह्म दिखाया तन मन शीतल होया रसना हर साध आया शब्दे ही ना उपजाए शब्दे मिल मिलाया बिन शब्द सब जग बौराना बिरथा जन्म गवाया अमृत एको शब्द है नानक गुरमुख पाया पौड़ी सो हर पुरख गम है कहो कित बिद पाई है तिस रूप न रेखा दृष्ट कहो जन क्यों त्याई है अनिरंकार निरंजन हर अगम क्या कह गुण गाई है जिस आप बुझाए आप सो हर मार्ग पाई है गुरपूरै वे खालिया गुरपुर सेवा पाई है श्लोक महला तीजा ज्यों तन कोलू पीड़ी है रतन पूरी डेह जियो वंजै चौखनी है सचे संदड़ै ने
ਨਾਨਕ ਮੇਲ ਨਾ ਚੁਕਈ ਰਾਤੀ ਤੈ ਡੇਹੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਸੱਜਣ ਮੈਂਡਾ ਰੰਗਲਾ ਰੰਗਲਾਈ ਮਨ ਲਈ ਜਿਉਂ ਮੈਂ ਜੀਠੇ ਕੱਪੜੇ ਰੰਗੇ ਪੀ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਰੰਗ ਨਾ ਉਤਰੈ ਬਿਆਹ ਨਾ ਲੱਗੈ ਕਿਹੇ ਪੌੜੀ ਹਰ ਆਪ ਵਰਤੈ ਆਪ ਹਰ ਆਪ ਬੁਲਾਇੰਦਾ ਹਰ ਆਪੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਵਾਰੂ ਸਿਰ ਤੰਦੈ ਲਾਇੰਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਭਗਤੀ ਲਾਏ ਇੱਕ ਆਪ ਖਵਾਇੰਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਰਗ ਪਾਏ ਇੱਕ ਉੱਜੜ ਪਾਇੰਦਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਣ ਗਾਇੰਦਾ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿੱਤ ਲਾਏ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫੁੱਲ ਪਾਵਣਾ ਹੁਮੈ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ ਬੰਧਨ ਤੋੜੈ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸੱਚੇ ਰਹਿ ਸਮਾਏ ਇਸ ਜਗ ਮਹਿ ਪੂਰਨਾਮ ਉਲੰਭ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਵਸੈ ਮਨ ਆਈ ਨਾਨਕ ਜੋ ਗੁਰ ਸੇਵਹਿ ਆਪਣਾ ਹਉ ਤਿੰਨ ਬਲਹਾਰਹਿ ਜਾਉਂ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਮਨਮੁਖ ਮਨ ਅਜਿਤ ਹੈ ਦੂਜੈ ਲੱਗੈ ਜਾਈ ਜਿਸਨੂੰ ਸੁਖ ਸੁਪਨੈ ਨਹੀਂ ਦੁਖੇ ਦੁਖ ਵਿਆਈ ਘਰ ਘਰ ਪੜ ਪੜ ਪੰਡਤ ਥੱਕੇ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧ ਲਗਾਈ ਇਹੀ ਮਨ ਵਸ ਨ ਆਵਈ ਥੱਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਈ ਭੇਖ ਧਾਰੀ ਭੇਖ ਕਰ ਥੱਕੇ ਅਸ਼ਟ ਤੀਰਥ ਨਹਾਏ ਮਨ ਕੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੈ ਨੀ ਹਉਮੈ ਭਰਮ ਭੁਲਾਏ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਭਉ ਪਾਇਆ ਵਡਭਾਗ ਵਸਿਆ ਮਨ ਆਏ ਭੈ ਪਇਆ ਮਨ ਵਸ ਹੋਵਾ ਹਉਮੈ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ ਸਚ ਰਤੇ ਸੇ ਨਿਰਮਲੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਨਾਉ ਪਾਏ।

मर जाए, सहसा रोग न छोड़ई, दुख ही माहे सुख पाए। सहसा रोग न छोड़ई, दुख ही महे दुख पाए। नानक नदरी बख्श लहे, नानक नदरी बख्श लेहे, शब्दे मेल मलाई। महला तीजा, जो सतगुर ते नौ फिरे ते ना ठौर न ठाऊं। जो फिटड़ कर कर फिरे, दो चारण बदनाऊं। नानक गुरमुख बख्शिया है, से सतगुर मेल मिलाऊं। मपौड़ी, जो सेवै सत मुरार, से पवजल तर गया। जो बोले हर हर नाऊं, तिन जामन छड़ गया। से दरगह पैंदा जाहि, जिन्ना हर जप लया। हार सेवै से ही पुरख, जिन्ना हार तुद मया। गुण गावां प्यारे नित, गुरमुख ब्रह्म पौ गया। श्लोक महला तीजा, थालै विच तै वस्तु पइयो, हर भोजन अमृत सार। जित खादै मन तृप्ति है, पाइयै मोख द्वार। एहि भोजन अलभ है, संतौ लभै गुर विचार। एहि मुदावणी क्यों विचों कढ़ी है, सदा रखी है उर तार। एहि मुदावणी सतगुरु पाई, गुरसिखां लद्दी भाल। नानक जिस बजाए सो बुझसी, हर पाया गुरमुख काल। महला तीजा, जो तुर मेले से मिल रहे, सतगुर स्यों चित लाए। आप बिछोड़े इन से बिछड़े, दूजै पाए खुआए। नानक अगण करमा क्या पाई है, पूर्व लिखिया कमाए। पौड़ी, बह सखियां जस गावें गावण हारियां। हर नाम सलाहें उन्नत, हर कौ बलहारियां। जिन्नी सुन मन्या हर नाऊं, तिनाहों वारियां। गुरमुखियां हर मेल मिलावण हारियां। हाँ बल जावां दिन रात, गुर देखण हारियां। श्लोक महला तीजा, बिन नावै सब परम दे, नित जग तो टा संसार। मनमुख कर्म कमावणे, होमै अंध गुबार। गुरमुख अमृत पीवना, नानक शब्द विचार। महला तीजा, सहजे जागै सहजे सोवै, गुरमुख अनदन औसत होवै। नानक नाम रतिया बल जाऊं, गुरमुख अनदन औसत होवै। मनमुख परमे सहसा होवै, अंतर चिंता नींद न सोवै। ज्ञानी जागै सवै सुभाए, नानक नाम रतिया बल जाऊं। पौड़ी, से हर नाम ते आवै, जो हर रतिया। हर एक ते आवै एक, एको हर सत्या। हर एको वरतै एक, एको उत्पत्या। जो हर नाम ते आवहे, तिन डर सट कतिया। गुरमति देवै आप, गुरमुख हर जपया। श्लोक महला तीजा, अंतर ज्ञान न आयो, जित केश सोजी पाए। बिन डिठा क्या सलाही है, अंधा अंध कमाही। नानक शब्द पछाणी है, नाम वसै मन आई। महला तीजा, एका बाणी एक गुण, एको शब्द विचार। सच्चा सौदा हट सच, रतनी परे भंडार। गुर कृपा ते पाई अनंज, देवै देवनहार। सच्चा सौदा लाभ सदा खटिया, नाम अद अपार। बेखो बेच अमृत प्रगटिया, करम पियावनहार। नानक सच सलाही है, धन सवारण हार। पौड़ी, जिन्ना अंदर कूड़ वरतै, सच न पावई। जे को बोलै सच, कूड़ा जल जावई। कूड़ियारी रजै कूड़, ज्यों विष्टा काग खावई। जिस हार होए कृपाल, सो नाम त्यावई। हारे गुरमुख नाम अराध, कूड़ पाप लह जावई। श्लोक महला तीजा, सेखा चौ चकिया चौ वाया। एह माने कत कर आण, एहड़ तेहड़ छड़ तूं। गुर का शब्द पछाण, सतगुर अगै टह पाओ। सब किछ जाने जाणू, आसा मनसा जलाए तू। होए रहो मेहमान, सतगुर कह पाणे पी चलै, तां दरगह पावै माणू। नानक जे नाम न चेतनी, तिन तिग पहनण तिग खाण। महला तीजा, हर गुण तोट न आवई, कीमत कहण न जाई। नानक गुरमुख हर गुण रवहि, गुण मह रह समाए। पौड़ी, हर चोली दे सवारी, कढ पैंदी भगत कार। हर खा पाठ लगा अधिकारी, बहु बहु बिद पांत कार। कोई बूझै बूझण हारा, अंतर बवेक कार। सो बूझै ही बवेक, जिस बुझाई आप हार। गजन नानक लह कह बेचारा, गुरमुख हर सत हार। श्लोक महला तीजा, परथाई साखी महापुरख बोल दे, सांझी सगल जहानै। गुरमुख होए सो पाओ करे, अपना आप पछाणै। गुर प्रसादी जीवत मरै, तां मन ही ते मन मानै।

जिनको मन की प्रतीत नाही नानक से क्या कथें ज्ञान नहीं। महला तीजा गुरमुख चित न लायु अंत दुख बहुता आई अंदरों बाहरों संध्या शुद्ध न काई पाई पंडित दिन की बरकती सब जगत खाए जो रते हर नाई जिन सा गुर कै शब्द सलाहिया हर स्यों रहे समाई पंडित दूजे भाई बरकत न हो गई ना धन पल्ले पाई पढ़ थके संतोख न आयो अणदिन जलत विहाई कूक पुकार न चूकई ना संसा विचों जाई नानक नाम बिहूने आ मुँह काले उठ जाए पौड़ी हर सज्जन मेल प्यारी मिल पंथ दसाई जो हर दसे मित तिस हों बल जाई गुण सांझी तिन स्यों करी हर नाम ते आई हर सेवी प्यारा नित हर सेव सुख पाई बलहारी सतगुर तिस जिन सोझी पाई। श्लोक महला तीजा पंडित मैल न चूकई जे वेद पढ़ें जुग चारु त्रैगुण माया मूल है विच हो मैं नामु बिसारु पंडित मूले दूजै लागे माया के कै वापारु अंतर तिशना भुख है मूर्ख भुख्या मुए गवारु सतगुर सेवे सुख पाया सचै शब्द विचार अंदरों तृष्णा भुख गई सचै नाई प्यारु नानक नाम रते सहजे रजे जिन्ना हर राख्या अवतारु। महला तीजा मनमुख हर नाम न सेवया दुख लगा बहुता आई अंतर अज्ञान अंधीर है शुद्ध न काई पाई मन हठ सहज न बीजियो भुखा के अगै खाई नाम निधान बिसारिया दूजा लगा जाई नानक गुरमुख मिल है बढ़ियाइया जे आपे मेल मिलाई पौड़ी हार रसना हर जस गावे खरी सुहावनी जो मन तान मुख हर बोले सा हर पावनी जो गुरमुख चखै साधु सा त्रिपतावनी गुण गावे प्यारे नित गुण गाई गुणी समझावनी जिस होवै आप दयालु सा सतगुरु गुरु बुलावनी। श्लोक महला तीजा हस्ती सिर ज्यों अंकस है अहरण ज्यों सिर दे मन तन आगे राख कै ऊबी सेव करे इं गुरमुख आप निवारी है सब राज सृष्ट काले नानक गुरमुख बूझी है जय आपे नदर करे। महला तीजा जिन गुरमुख नाम ते आया आए ते परवाणु नानक कोल उधारे अपना दरगह पावे मान पौड़ी गुरमुख सखियां सिख गुरु मैं लाइया एक सेवक गुर पास एक गुर कारे लाइया जिन्ना गुर प्यारा मन चित तिना भाओ गुरु देवाइया गुर सिखा इको प्यार गुर मित्तां पुत्तां पाइया गुर सतगुर बोलो सब गुर आख गुरु जी वाइया। श्लोक महला तीजा नानक नाम ना चेतनी अज्ञानी अंधले अबरी कर्म कमाहे जमदर बद्धे मारिय है फिर विष्टा माहे पचाहे। महला तीजा नानक सतगुर सेवै अपना से जान सचे परवान हर का नाई समाई रहे चूका आवन जान पौड़ी तन संपै माया संची है अंते दुखदाई घर मंदर महल सवारी है किस साथ न जाई हर रंगी दुरे नित पाली है कित काम न आई जनना लावो चित हर नाम स्यों अंत होए सखाई जन नानक नाम त्याया गुरमुख सुख पाई। श्लोक महला तीजा बिन करम ना उन्ह पाई है पूरे कर्म लिखया पाया जाए नानक नजर करे जे अपनी ता गुरमत मेल मिलाए। महला तीजा एक दबा एक दजिया एक ना कुत्ते खाए एक ना पानी विच सुटी आए एक भी फिर हसन पाए नानक एव न जापई जिथ किथे जाए समाए पौड़ी तिनका खादा पहंदा माया सब पवित है जो नाम हर राते तिनके घर मंदिर महल सराई सब पवित है जिन्नी गुरमुख सेवक सिख अभ्यागत जाई वरसाते तिनके तुरे जीन खुरगीर सब पवित है जिन्नी गुरमुख सिख साध संत चढ़ जाते तिनके कर्म धर्म कार्य सब पवित है जो बोले हर हर राम नाम हर साते जिनकै पोतै पुन है से गुरमुख सिख गुरु पै जाते। श्लोक महला तीजा
ਨਾਨਕ ਨਾਵੋ ਕੁਥਿਆ ਹਲਤ ਪਲਤ ਤੋ ਸਭ ਜਾਈ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਸਭ ਹਿਰ ਲਿਆ ਮੁੱਠੀ ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਜਮਦਾਰ ਬੱਧੇ ਮਾਰੀ ਐਂ ਬਹੁਤੀ ਮਿਲੈ ਸਜਾਈ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਵੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਿਆਰੂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਮਰ ਜੰਮੈ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਦੇ ਨਾ ਬੁੱਝਈ ਦੁਬਧਾ ਹੋਏ ਖੁਆਰ ਮੂੰਹ ਕਾਲੀ ਤਿੰਨ ਨਿੰਦਕਾਂ ਤਿਤ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਿਹੂਣਿਆ ਜੇ ਨਾ ਉਰਵਾਰ ਨਾ ਪਾਰ ਪੌੜੀ ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇ।

हर सेवमे जिन तुर मस्तक लेख लखाई हर के गुण नित गावे गुण हर गुण गाई गुणी समझाई वड्याई वड्डी गुरमुखा गुरपूरे हर नाम समाई। श्लोक महला तीजा सतगुर की सेवा गाखड़ी सिर दीजा आप गवाए शब्द मरहे फिर ना मरहे सेवा पवै सबथाई पारस परसे है पारस होवै सच रहे लिवलाई जिस पूर्व होवै लिखया तैस सतगुर मिलै प्रव्याई नानक गणतै सेवक ना गणई जिस बख्शे सो वे पवै थाई। महला तीजा महल को महल न जाननी मूर्ख अपने सवाए शब्द चीने ता महल लहें ज्योति ज्योत समाए सदा सच्चे का पाव मन वसै ता सबाखा सोजी पाए नानक सतगुर अपने कर वरतदा आपे लय मिलाए नानक सतगुर मिलिया सब भुख गई जिसनो कृपा करे रजाए पौड़ी तन तन भावित न भगत जना जो हार हार नामा हर मुख कहतिया तन तन भावित न संत जना जो हर जास प्रवणी सुनतिया तन भा तन तन भागत न साध जना हर कीर्तन गाए गुणी जन बनतिया तन तन भागत न गुरमुखा जो गुर सिख लै मान जिणतिया सबदू वड्डे भाग गुरसिखा के जो गुर चरणी सिख पढ़दिया। श्लोक महला तीजा ब्रह्म बिंदै दिसदा ब्रह्म त्रहै एक शब्द लिव लाए नव निधि अठारह सिद्धि पिछै लगियां फिराए जो हर हिरदय सचा सदा बसाई बिन भागा नाउ ना पाई है बूझों कर विचार नानक पूरै भाग सतगुर मिलाए सुख पाई जुग चार। महला तीजा क्या गबरू क्या बिरद है मनमुख तृष्णा भुख न जाए गुरमुख शब्दे रतिया शीतल होए आप गवाए अंदर तृप्त संतोखिया फिर भुख न लग आए नानक जी गुरमुख करें सो प्रवान है जो नाम रहे लिवलाए पौड़ी।

पंजवा पई परापत मानुख देहुरिया गोबिंद मिलन किए तेरी बरिया अबर काज तेरा किता ना काम मिल साध संगत भज केवल नाम सरंजा मिलाग भव जल तरन कै जन्म मृथा जात रंग माया कै राव जप तप संजम धर्म ना कमाया सेवा साध ना जानिया हर राया।

बेनती जो पई हमरी करो हृदय रक्षा पूर्ण होए जित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो ब्रत पारा हमरे दोष सब तुम कावहु आप हाथ दे मोहि बचावहु।

तोर भजन की रह प्यासा। तुम है शाडुकी अवरना त्याऊ, जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं। सेवक सेख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ मुझे भरे आए, मरण काल का द्रास में भरे आए।

काल पाए कर विष्ण प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी सब कियो, वेदराज ब्रह्मा जो थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है दाए मारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दयांत जसन उपजायो। आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझे हमारा। नमस्कार दसी को हमारी, सकल प्रजा जन आव सवारी। सेवकन को सेवकुन सुख दियो, सतरन को बल मोहबद कियो। कड़क

कृपादृढ़ कर भूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, कड़ कड़ के बड़ बड़ की जाने। जब युद्ध करख करा कर तारा, प्रजा धरत तब देह अपार। जब या करख कर तो कबहू, तुम मैं मिलत दे तर सबहू।

खवैया पाए कहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आने ओ। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक न माने ओ। सिमरत शास्त्र वेद सब है बहु भेद कहे हम एक न जाने ओ। सरी असबान कृपा तुमरी कर मैं ना कहे ओ। सब तुहे बखाने ओ। दोहरा

सदगुरु प्रसाद, आनंद पया मेरी माई, सदगुरु मैं पाया, सदगुरु ता पाया सह सेती, मन वजिया बधाइया, राग रतन परवार परियां, शब्द गावने आईया, शब्द संगा बोरी गेरा, मन जिने बसाया, कहे नानक आनंद हुआ, सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब विसारना, अंगीकार करे तेरा कार्य सब सवारना, सबना गल्ला समरथ स्वामी, सो क्यों मनो विसारे, कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहिबा क्या नाही कर तेरा, करता तेरा सब किश है, जिस दे सो पावे, सदा सिरत सलाह तेरी, नाम मन वसावे, नाम जिन कै मन वसया, वाजे शब्द कनेरे, कहे नानक सच्चे साहिब क्या नाही कर तेरा, साचा नाम मेरा आधार, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया, कर शांत सुख मन आई वसया, जिन इच्छा सब पजाइया, सदा कुर्बान किया गुरबिट हो, जिस दियां ही

सज्जन सच्चा पातशाह सिरशाह दशाह जिस पास बैठिया सो ही आए सबना दा बेसार। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। श्लोक महला तीजा। ब्रह्म बिंदै किसदा ब्रह्म तरहै एक शब्द लिवलाई नाव निधि अठारह सिद्धि पिछै लगियां फिरहै जो हर हिरदय सदा वसाई। ब्रह्म बिंदै किसदा ब्रह्म तरहै एक शब्द लिवलाई नाव निधि अठारह सिद्धि पिछै लगियां फिरहै जो हर हृदय सदा वसाए।

पौड़ी हों बलहारी तिन कौ जो गुरमुख सिखा जो हर नाम ते आएंदे तिन दर्शन पिखा सुन कीर्तन हार गुण रवा हार जास मन लिखा हर नाम सलाही रंग स्यों सब किलबिख क्रिखा तन धन सुहावा सो शरीर थान है जिथ मेरा गुर धरे विखा हर नाम सलाही रंग स्यों सब किलबिख क्रिखा तन धन सुहावा सो शरीर थान है जिथ मेरा गुर धरे विखा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। सोहिला राग गोविंदी की महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद जय कर किरत आखिया करते का होए विचारो तित कर गावो सुहिलाओ सिवरियो सिरजनहारो तुम गावहो मेरे निरपौ का सुहिलाओ वारी जित सुहिला सदा सुख होए राओ नित नित जीअड़े समालियन देखेगा देवनहार तेरे धन कीमत ना पवै तिसदा ते कवन सुमार संबत साहा लिखिया मिल कर पावो तेल देह सजना सिसड़िया जहो वै साहु सुमेल कर करे हो पहुंचा सदड़े नित पवन सदन हार सिमरिय नानक से दे अवन

बाबा जय कर करते कीर्त होए, सो कर राखू बढ़ाई तोय राम। विश विच असियां कड़िया पैरा खेती वारी माहवा, सूरज कुर अनेक नानक करते के वेश। राग तनासरी महला पहला, गगन मै थाल रब चंद दीपक बने, तारिका मंडल जनक मोती। धूप माले आन लो पवन जबरो करे, सगल बनराई फूलंत ज्योति। कैसी आरती होए पव खंडना तेरी आरती, अनहता शब्द वाजंत तेरी राव। सहस तब नैन नन नैन है तोहे कौ, सहस मूर्त नन एक तोही। सहस पद बिमल नन एक पद गंध देन, सहस तब गंधेव चलत मोही। सब मैं जोत जोत है सोए, तिस दै चानण सब मैं चानण होए। गुरसाखी जोत प्रगट होए, जो तिस पावै सो आरती होए। हार चरण कवल मकरंद लोभित मनो, आनंदनो

चौथा काम क्रोध नगर व परया नल साधु खंडल खंडा हे पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मन हर ले वो मंडल मंडा हे कर साधु अंजलि पुन वड्डा हे कर डंडावत पुन वड्डा हे राहो ताकत हर रस साध न जानिया तने अंतर हो मैं कंडा हे ज्यो ज्यो चल है चुभ दुख पाव है जमकाल सह है फिर डंडा हे हर जन हर हर नाम सुमाने दुख जन्म मरण पव खंडा ही अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु सोब खंड ब्रह्मंडा ही हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख बड़ बड़ा ही जन नानक नाम धार टेक है हर नामे ही सुख मंडा ही राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा करो बिनंती सुनो मेरे मीता संत टहल की बेला इहां खाट चलो हर ला आ गए बसन सुहेला।

तरयो ब्रह्म ज्ञानी जिसै जगाए पिया वह रस अकथ कथा तिन जानी जा को आई सुई बिहाजो हर गुरते मन है बसेरा निज कर महल पावो।

वो कर्म खंड की वाणी जोर, कर्म खंड की जो बनतर है, बनावट है, उदे विच जिदे ते बख्शिश हो जाती है उदे अंदर फिर जोर बल आ जाता है। और बल किस रूप में आता है? कोई थोड़ा भी उदे हाथियों वर्गा जोर आ जाता है, कोई घोड़ियों वर्गा जोर आ जाता नहीं, किथे होर न कोई होर सवाए अकाल पुरख के सिमरन तो, उदी हस्ती नू मनन तो, जिथे होर न कोई होर किसी का जिक्र ही नहीं उच्चा। पर साढ़े अंदर ध्याली बड़े जिक्र बड़े

0: Swanandar Bhavani Tanu Five Shri Guru Granth Sahib Ji Maharaj Sachi Patshah Ji Parmat Jur Karke Jithe Guru Sahib Sachi Patshah Ji Dharat Amre Naam Ote Guru Sahib Ji Mithi Kali Ki Jod Ananda Maan Ke Guru Sahib Ji Bhoi Nari Kalli Vai Ke Naam Japna Har Bhaut Hai Koi Ant Nahi Hajaran Guna Phal Hai संगत नाल मिलके नाम जपना लखां गुना फल है संगत नाल मिलके धन धन गुरु ग्रंथ साहिब वाले जी के विच नाम जपना करोड़ां गुना फल है जी के आखो
1: सतनाम
0: मिलके नाम जपना धन गुरु अर्जन देव जी

0: तू मेरा
1: मेरा
0: तेरे काम को नानक करेगा कि तेरी भगत मनी गोपाल तेरा माता जो

0: दूसरे काम करने जरूर नहीं है, पर मेरा काम नहीं करता ना बेटा, तो काम तेरे दूसरे काम नहीं होने, अगे जाते काम नहीं होने। जय बाप पिता सोतर महा नाम के, जय महा प्रहान दूध जम बने केवल नाम संग, जय मुस्तल होवे अपारी हर को नाम
1: खेना,
0: अंत बने चरण कर्तन करे हर को नाम को, गुरम के नाम चतु मान मेरे नाम चुपाओ, जन्म समय शरीर नाल आया सी ओ मन लगिया तेरी लाल नी जाना, तेरी घड़ी नी लाल नी उंगली नी लाल नी शाम सला, तेरे नवे कपड़े भी लाल है मंजे तो भी मार दिता, जन्म समय शरीर नाल आया सी मोया पे भी मार नी गया, वीर कौटी कौटी जोड़ गए जोड़े नाथ करो, चलती बार नाटा सुनो गई ਜੋਤੀ ਪੁਰ ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਰਦਾ ਰਿਹਾ ਖਪਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਘੜੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

छोड़ के फिर अगे वापस जाना है तो माला कृपा करी हाजिरी प्रवान करो नाम नाम तेरे पास

संगीतं सारि संगत धन धन धन धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह ने सोहणिया चरणा का ध्यान करो गाजवाल के बदले बुलाओ आखरी गुरबाणी का अर्थ बिना कीर्तन धन धन गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जी महिमा आप जी सरवण कर रहे श्री थोड़ा जो समा हो मंडियां गागर करके सच्चे पातशाह मिठी नदी की गौ का आनंद मान रहे हैं सच्चे पातशाह के दर्शन कर रहे हैं सच्चे पातशाह के गुण गा रहे हैं बहुत बड़ी कृपा सारे संगत के दर्शन और सिखा के दर्शन हो रहे हैं किन्ने गुरु नानक नाम ने सिख इन्होंने रोडा तो हाईवे तो लंघते हो गए रस्ते बड़े ही जीवनी के स्टोर आते हैं जिन्हों के अरबा खरबा डॉलर की जीवनी सोना चाली है इन्होंने रोडा के बड़े बैंक आते हैं जिन्होंने अरबा खरबा डॉलर पे ने पर किसी गुरु नानक नाम वाले वाल सिख का शीस नहीं झुकेगा कि इतने बड़ा सोना है इन्हों बैंक बड़े डॉलर ने शीस गलत झुकेगा जो आवाज विश्राम साहब के दर्शन होने के बाजा वाला याद आ जाएगा धन गुरु गोबिंद सिंह पुत्रां का दानी झोल के निशान रहे पंथ महाराज के विश्राम साहब झूल रहे आज धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज याद आओगे दसवें पातशाह अंदर धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का प्रकाश है बाहर निशान साहब झूल रहे सिखा तू तो आप ही गुरुद्वारा है तेरे अंदर हो गए बाणी तो बाहर हो गए बाणा करके जिधर तू जाए नाम दिया पैदा ही करता जाए तेरे अंदर बाणी हो गए बाहर बाणा हो गए उनके अंदर प्रकाश ही ना हो बाहर निशान साहब ही ना हो बाहर गुरु के निशान है अंदर गुरु साहब का प्रकाश है इसलिए सिखा तेरे अंदर हो गए बाणी बाहर हो गए बाणा जिधर तू जाए नाम जपदा ते नाम जपाउंदा ही जाने गज के अर्थ सतनाम धन गुरु रामदास सारे आखो धन गुरु गज के आखो धन गुरु जिन्हों के सोहने दरबार के आप बैठे हैं ना गुरमुख भाई जेठा छोटी जी उम्र है जो मां का छाया सिर तो उठ गया पिता का छाया सिर तो उठ गया ताए जाते कहते जेठा जतीम हो गया जेठा जतीम हो गया हम नानकिया तो बाद नानकिया का आसरा होता है।

का मन गुरु वेद देता मन देते सदगुरु के पास एक सेवक के फिर तो गुरु से ही बन गए गुरु से ही बन गए मन हो गए निहाल ज्ञान गुरु देखा नानी मां ने आखिया देखा चलिए वापस आखिया मां मैं कितने जाना है हूं तू मेरा पिता तू है मेरा माता तू मेरा बंधक तू मेरा भ्राता तू मेरा राखा सबने ताई ताम भाव के सारा जीओ हूं तो गुरु की सेवा लग गए हूं तो मेरे धन गुरु अपना नाथ हो

सदगुरु की सेवा सरल है, जे को करे जित लाए, मन जपिया फल भावना होवे मिटियो जाए। का सेवा सेवक प्रभु अपने जिन मन की केछ पजाई, नानक दास साके बलिहारे दिल पूरन सहज पाए। सेवा करनी हो है चंगी भाई सिंह, सेवा करनी हो है चंगी जिथे आवे याद प्यारा, दिल भी जुड़ जाए दुनिया भुल जाए, जीवन सफर हमारा घर के सेवा करते गए। अब बच्चों से कंट्रोल करो भाई, जब नजर हाल में चला जाना गुरु के दरबार में सुबह गुरमुख सेवा करी गए, सेवा करी गए भावना है। ये किसे आखिया देखेगा दोपहरे संगत राम का भी पूरी राम कर ला, ये आखिया देखेगा सारे घर चले गए, तू समान भी संभाल कर रहे हैं, तू ही

छाती ना लिया बड़ा प्यार पीता गल थरिया की नहीं थी मारे प्रार्थना वे

समय बस्तर को आओ पांच पैसे डाल के रखे पर कर्मा दिखी तां गुरु अमरदास महाराज ने मथा टेक दिता। संगता ने भी पता महाराज के मथा टेक दिता जी ने चरना चंगा जोड़ा नहीं करते चंगे कपड़े नहीं कोई घुमिया कहना फिटिया कोई कहना है कटिया है माता पिता ने छाया उठ गया भैन भरा कोई कह नहीं अज एक घुमिया वेचन वाले धन गुरु अमरदास महाराज की नजर हो गई महाराज ने की बना

आपे देवड़े आईया कहो नानक सच्चा सुहे पौड़ी। कंटक काल एक है होर कंटक ना सूजै, अपरयो जग मह वर्तदा पापी स्यों लूजै। गुर शब्दी हर पेदी है हर जप हर बूजै, सो हर सरनाई छुट्टी है जो मन स्यों जूजै। मन विचार हर जप करे हर दरगाह सीजै। सलोक महला पहला हुक्म रजाई साखती, दरगाह सच कबूल साहिब लेखा मंगसी। दुनिया देख ना भूल दिल दरवानी जो करे दरवेसी दिल रास। इश्क महब्बत नानका लेखा करते पास महला पहला, अलगो जो ये मधुकड़ो सारंग पान सबाय। हीरे हीरा बेदिया नानक कंठ सुपाए पौड़ी। मनमुख काल वे आपदा मोहे माया लागे, हिन मह मार पछाड़ सी पाए दूजै ठागे। फिर वेला हाथ न आवई जम का डंड लागे, तिन जम डंड न लगई जो हर लिव जागे। सब तेरी तुद छामणी सब तुदै लागे। सलोक महला पहला सर्बे जोए अगस्मी दूख कनेरो आत, कालर लादस सर लांगणो लाभ न पूंजी सात। महला पहला पूंजी साचो नाम तू अखुटो दर्ब अपार, नानक वखर निर्मलो धन साहा वापार। महला पहला पूरब प्रीत प्राण लै मोटो ठाकुर मान, माथे उभय जम मारसी।

काम इकनी गुरमुख बुझिया हरे आत्म राम इकनी सुनके मन्या हरे उत्तम काम अंतर हर रंग उपजिया गाया हर गुण नाम। सलोक महला पहला पोल तन पै मन वसै एक पद रहीद अत दापन दुख कणो तीने थाम परीद। महला पहला मांडल वेद से

सतगुर मिलै ता पार पवां, मज पर दुख बदुख नानक सच्चे नाम बिन किसै न लथी भुख पौड़ी। जिन्नी अंदर भालिया गुर शब्द सुहावै, जो इच्छन सो पाए दे हर नाम ते आवै। जिसनो कृपा करे तिस गुर मिलै, सो हर गुण गावै। धर्म राय तिनका मित है, जम मग ना पावै। हर नाम ते आवै दिन सुरात, हर नाम समावै। सलोक महला।

कौन मारसी, कौन आवे कौन जाए, कौन रहसी नानका, किसकी सुरत समाए। महला पहला, हो मुआ मैं मारिया,

एको सिमरहु पाए रहो तिस बिन अवर ना कोई। थारा शब्द चंगे आईया जित खादै सदा तृप्त होए। पैनन सिफत सुनाए है सदा सदा ओह ऊजला मैला कदे ना होए। सहजे सच धन खटिया थोड़ा कदे ना होए। देही नो शब्द शिंगार है जित सदा सदा सुख होए। नानक गुरमुख बुझी है जिसनो आप बखाले सोए। पौड़ी अंतर जप तप संजमो गुर शब्दी जापै हर हर नाम त्याई है। हो मैं अज्ञान गुआपै अंदर अमृत भरपूर है चाखियां साध जापै। जिन चाखिया से निरपो भये से हर रस त्रापै। हर कृपा तार पी आया फिर काल ना व्यापै। सलोक महला तीजा लोक अवगणा की बन्नै गंठड़ी गुण ना व्याजै कोई। गुण का गाहक नानका विरला कोई होए। गुर प्रसादी गुण पाइन जिसनो नदर करे महला तीजा। गुण अवगुण समान है जे आप कीते करतार। नानक हुक्म मन्ने है सुख पाई है गुर शब्दी विचार। पौड़ी अंदर राजा तख्त है आपे करे न्याओ। गुर शब्दी दर जानिए अंदर महल असराओ। खरे परख खजाने पाइन खोटिया नाही थाओ। सब सचो सच वर्तदा सदा सच न्याओ। अमृत का रस आया

बूझो ज्ञानी बूझना ए अकथ कथा मन माए बिन गुर तत ना पाई है अलख वसै सब माहे सतगुर मिले ता जानिए जा शब्द वसै मन माहे आप गया भ्रम पहो गया जन्म मरण दुख जाहे गुरमत अलख लखाई है उत्तम मत तराए नानक सोहं हंसा जप जप हो त्रे भवन तिसै समाहे महला तीजा मन माणक जिन परखिया गुर शब्दी विचार से जन विरले जानी है कल युग विच संसार आपै नो आप मिल रहिया हौ मैं दुबदा मार नानक नाम रते दुत्तर तरे भौजल बिकम संसार पौड़ी मनमुख अंदर ना पालनी मुठे अहमते चारे कुंडा भव थके अंदर तिख तत्ते सिमरत सास्त ना सोधनी मनमुख वे गुत्ते बिन गुर किना ना पायो हर नाम हर सत्ते तत् ज्ञान विचारिया हर जप हर गते सलोक महला दूजा आपे जाने करे आप आपे आने रास तिसै अग्गे नानका खले कीचे अरदास महला पहला जिन किया तिन देखिया आपे जाने सोए किसनो कहिए नानका जा घर वरतै सब कोए पौड़ी सबे थोक वसार इको मिट कर मन तन होए निहाल पापा दह हर आवन जाना चुकै जन्म ना जाहे मर सच नाम आधार सोग ना मोहे जर नानक नाम निदान मन मह सांझ धर सलोक महला पंजवा माया मनो ना विसरै मांगै दम्मा दम सो प्रभ चेतना आवै नानक नहीं करम महला पंजवा माया साथ ना चलै क्या लपटावै अंध गुर के चरण त्याए तू टूटह माया बंद पौड़ी भाणै हुक्म मनायुन भाणै सुख पाया भाणै सतगुर मेलियुन भाणै सच त्याया भाणे जेवड़ होर दात नाही सच आख सुनाया जिनको पूर्व लिखिया तिन सच कमाया नानक तिस शरणागति जिन जगत उपाया सलोक महला तीजा जिनको अंदर ज्ञान नहीं पै की नाही बिंद नानक मुया का क्या मारना जे आप मारे गोविंद महला तीजा मन की पत्री वाचनी सुखी हूं सुख सार सो ब्राह्मण भला आखी है जे बूझे ब्रह्म विचार हर सलाहे हर पढ़े गुर कै शब्द विचार आया ओ परवान है जे कुल का करे उधार अग्गे जात ना पुछी है करनी शब्द है सार होर कूड़ पढ़ना कूड़ कमावना विख्या नाल प्यार अंदर सुख ना होवे मन मुख जन्म खुवार नानक नाम रते से उबरे गुर कै हित अपार पौड़ी आपे कर कर वेखदा आपे सब सच्चा जो हुक्म ना बूझै खसम का सोई नर कच्चा जित पावै तित लाएंदा गुरमुख हर सच्चा सबना का साहिब एक है गुर शब्दी रचा गुरमुख सदा सलाही है सब तिस दे जच्चा ज्यो नानक आप नचाएंदा ते वही को नचा शुद्ध मारू वार महला पंजवा दखणे महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद तू चौ सज्जन मैंडिया देई से उतार नैण महिंजे तरस दे कद पसी देदार महला पंजवा नीहो महिंजा तौ नाल ब्या नेह कुड़ावे देख कपड़ भोग डरावणे
जिचर प्री ना देख महला पंजवा उठी चालू कलतड़े हो पसी तो दीदार काजल हार तमोल रास बिन पसे हब रस शार पौड़ी तू सच्चा साहेब सच सच सब तारिया गुरमुख की तो थाट सिरज संसारिया हर आग्या हुए बेद पाप पुन विचारिया ब्रह्मा बिछन महेश त्रै गुण विस्थारिया नावखंड पृथ्वी साज हर रंग सवारिया वेकी जंत पाई अंतर कल तारिया तेरा अंत न जाने कोई सच सिरजन हारिया तू जाने है सब बेदे आप गुरमुख निस्तारिया दखणे महला पंजवा जे तू मित्र असाडड़ा एक पूरी ना वे छोड़ जियो महिंजा तो मोहया कद पसी जानी तोहे महला पंजवा दुर्जन तू जल पहाड़ी विछोड़े मर जाए कंता तू सौ सिजड़ी मैंडा हबो दुख अलाहे महला पंजवा दुर्जन दूजा पाओ है विछोड़ा हूं मैं रोग सज्जन सच्चा पातशाह जिस मिल की चै भोग पौड़ी तू अगम दयाल बेअंत तेरी कीमत कह कौन तुद सिरजिया सब संसार तू लायक सगल पौन तेरी कुदरत कोई ना जाने मेरे ठाकुर सगल रौन तुदे अपन कोई ना सकै तू अविनाशी जग उधरन तुद थापे चारे जुग तू करता सगल धरन तुदे आमन जाना किया तुद लेप ना लगे त्रिण जिस होवै है आप दयाल तिस लावै है सतगुर चरण तू होरत अपाए ना लभही अविनाशी सृष्ट करन दखणे महला पंजवा जे तू बतै अंगणे हब तरत सुहावी होए हिकस कंतै बाहरी मैंदी वात ना पुछे कोई महला पंजवा हबे टोल सहावणे सहो बैठा अंगण मल पही ना वंजै बिरथड़ा जो घर आवै चल महला पंजवा सेज वछाई कंत कु किया हब शिंगार इत्ती मंज ना समावई जे गल पहरा हार पौड़ी तू पार ब्रह्म परमेश्वर जोन ना आवही तू हुक्मी साजह सृष्ट साज समावही तेरा रूप ना जाई लखिया क्यों तुझह त्यावही तू सब मह वरतह आप कुदरत दिखावही तेरी भगत भरे भंडार टोट ना आवही एहे रतन जवेहर लाल कीम ना पावही जिस होवै आप दयाल तिस सतगुर सेवा लावही तिस कदे ना आवै तोट जो हर गुण गावही दखणे महला पंजवा जामु पसी हठ मैं प्री महिंजै नाल हब्बे दुख उलाहयम नानक नदर निहाल महला पंजवा नानक बैठा पखे वाऊ लम्मे से वै दर खड़ा प्रिय तू जान महिंजा साओ जोई साई मुह खड़ा महला पंजवा क्या गलायो पूछ पर वेल ना जोहे कंत तू नानक फुला संधि वाड़ खिड़िया हब संसार ज्यो पौड़ी सुगड़ सुजान स्वरूप तू सब मह वरतनता तू आपे ठाकुर सेवको आपे पूजनता दाना बीना आप तू आपे सतवंता जति सती प्रभ निर्मला मेरे हर भगवंता सब ब्रह्म पसार पसारे हो आपे खेलंता एहो आवा गौण रिचायु कर चोज देखंता तिस बहुड़ गर्भ ना पावही जिस देव है गुरमंता जो आप चलाव है त्यों चल दे किस वस ना जनता दखणे महला पंजवा कुरिए कुरिए वैद्या
ਤਲ ਗਾਲਾ ਮਹਰੇਰ ਵੇਖੇ ਚਿੱਕੜ ਥੀਵਦੋ ਜਾਮ ਛਸੰਦੋ ਪੇਰ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੱਚ ਜਾਣੈ ਕੱਚ ਵੈ ਦਿਓ ਤੂੰ ਆਗੂ ਆਗੇ ਸਲਵੇ ਨਾਨਕ ਆਪ ਸੜੀ ਮਾਂਜ ਨੈਣੂ ਵਿਆਹ ਧਨ ਪੱਬਣ ਜਿਉਂ ਜੁੰਮ।

आवै रुत पौड़ी तुद रूप ना रेखिया जात तू वरना बाहरा ये मानस जान है दूर तू वरत है जाहरा तू सब कट भोग है आप तुद लेप ना लाहरा तू पुरख अनंदी अनंत सब जोत समाहरा तू सब देवा मह देव पदाते नरहरा क्या अरादे जिहवा एक तू अवनासी अपर परा जिस मेल है सतगुरे आप तिसके सब कुल तरा सेवक सब कर दे सेव दार नानक जन तेरा दखणे महला पंजवा गहदरड़ा तृण छाया गाफल जले ओह पाहे जिन्ना भाग मथाहड़ै तिन उस्ताद पनाहे महला पंजवा नानक पीठा पक्का साजिया धरिया आण मौजूद बाजो सतगुरे अपने बैठा झाक दरूद महला पंजवा नानक पुस्तरियां पकाइया पाइया खाले माहे जिन्नी गुरु मनाया राज राज से ही खाहे पौड़ी तुद जग मह खेल रचाया विच हो मैं पाइया एक मंदर पंच चोर है नित कर है बुरे आईया दस नारी एक पुरख कर दसे साध लुभाइया एन माया मोहनी मोहिया नित फिर है परमाइया हाथा दोहै कीतियो शिव सकत वरताइया शिव अग्गै सकती हारिया एवै हर पाइया एक विचो ही तुद रखिया जो सतसंग मलाइया जल विचो बिंब उठालियो जल माहे समाइया दखणे महला पंजवा अगाह कूतरांग पिछा फेरना मुहडड़ा नानक सिज अवेहा वार बहुड़ ना होई जन्मड़ा महला पंजवा सज्जन मैंदा चाइया हब कही दा मित हबे जानने अपना कहीं ना ठाहे चित महला पंजवा गुजड़ा लदम ला

किरण को क्यों दर्शन पाया, मैं लख विड़ते साहेबा जे बिंद बुलाइया, मैं चारे कुंडा पालिया तुद जेवड़ ना साइया, मैं दसे हो मार्ग संत हो क्यों प्रभु मिलाइया, मन अर्पे हो हम मैं तजो हो इत पंत जलाइया, नित सेवे हो साहेब अपना सतसंग मलाइया, सबे आसा पूरिया गुरमहल बुलाइया, तुद जेवड़ होर ना सुजई मेरे मित्र गुसाइया, दखणे महला पंजवा मूथिया तख्त प्री महिंजे पातशाह, पाव मलावे कोल कमल जिवै बिग साम दो महला।

मेरा किया कछु न होए, कर है राम होए है सोए। इस तरह जद साडे मन नू इलाही प्यार दी प्यौन चढ़ जांदी है, किवें चढ़दी फिर दोहरा दईए कि मन नू निर्मल करना, संगत विच आ के सिमरन कर करके इस तरह निर्मल करदिया जदों पूरी तरह निर्मल होए, फिर अपने आप ही तू तेरी दी भावना उपज पैंदी है, मैं मेरी नू तू तेरी दी प्यौन चढ़ जांदी है। इस तरह जद साडे मन नू इलाही प्यार दी प्यौन चढ़ जांदी है तां सानू प्रतीत आउंदा है कि इलाही हुकम ही सारे पासे ओत पोत रव रिया भरपूर है ते साडी निक्की जई होमे दी मनमर्जी लई कोई थां नहीं। उस अटल अपुल अपार इलाही हुकम दी रवानगी दे वेग विच रुणना जां पहाड़े विच सुर हो के चलना ही इह साडा फर्ज है ते साडे लई लाभदायक अते कल्याणकारी भी है। जग्यासु इस आत्मक अवस्था विच इउं प्रतीत करदा है, जो तू करें करावे स्वामी सा मसलत परवान, हम किछ नाही एक है ओही, मैं नाही प्रभ सब किछ तेरा, काठ की पुत्री कहां करे बपरी खिलावन हारो जाने, जे करावे सो करना, मैं नाही किछ आऊ नाही किछ आए न मोरा, मीत करे सोई हम माना मीत के कर्तव कुशल समाना। सो जदों इन्हां दोहां मानसिक ते आत्मक अवस्थावां नूं इउं दर्शाया गया है, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ

विस्तृतायुम संतं सद्गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन गुरु तनि गुरु जी गुरु प्यारी पासन जी हो वाहे गुरु जी का खालसा वाहे।

नाचते नाचते कर रहे हैं। गजबल के पति का जवाब दे, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बड़े प्यार के नाल साहिबान के पावन चरणों में बैठे हैं।

दर्शन मांगोंदे प्यारी तुमरी सेवा कौन कौन ना तारी। हम अब गुण भरे एक गुण नाही अमृत छाड़ बिख बिख खाई। माया मोह परम पै पुले सुतदारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो शरणाई। सो कहो टल गुर सेवी है अहनस सहज सुपाई। दर्शन परसिया गुरु कै जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत समी नूर अरसों कुरसों चटी है उद डिठे सचे पातशाह। माल जन्म जन्म भी कटी है सज्जन सच्चा पातशाह सिर शहद शाह। जिस पास बैठे सोही है सब नांदा वेसा। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। राग सोर ठकी वार सलोक महला तीजा। गुर सेवा ते सुख उपजै फिर दुख ना लगै आए। जम्मण मरना मिट गया काले का किछ ना बसाए। गुर सेवा ते सुख उपजै फिर दुख ना लगै आए। जम्मण मरना मिट गया काले का किछ ना बसाए। हर सेती मन रब रहया सचे रहया सुमाए। नानक हों बलहारी तिन कौ जो चलन सतगुर पाए। महला तीजा। बिन शब्द सुध न होवई जे अनेक करै शिंगार। फिर की सार ना जानई दूजे भाई प्यार।

हर हर अपनी दया कर हर बोली बणी हर नाम ते आई हर उचरा हर लाहा लैणी जो जपदे हर हर दिन सरात तिन्हां कुरबैणी जिन्ना सतगुर मेरा प्यारा आराध्या तिन जन देखा नैणी हां वारिया अपने गुरु का जिन मेरा हर सज्जन मिलया सैणी जिन्ना सतगुर मेरा प्यारा आराध्या तिन जन देखा नैणी हां वारिया अपने गुरु का जिन मेरा हर सज्जन मिलया सैणी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी ओम जापो जी साहिब एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सुचै सोच न हो वही जे सोची वख वार चुपै चुप न हो वही जे लाए राम अवतार ਭੁੱਖਿਆ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਪਾਰ ਤਹਿ ਸਿਆਣ ਕਾਲਾ ਕਹੋ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੈ ਨਾਲ ਕਿਵ ਸਜਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀ ਹੁਕਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ ਹੁਕਮੀ ਉਤਮ ਨੀਚ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਪਾਈ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸਿੱਖ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈ ਹੈ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁੱਝੈ ਤਾਂ ਹੁਮੈ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗਾਵੈ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੈ ਕਿਸੈ ਤਾਣ ਗਾਵੈ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਗਾਵੈ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆਂ ਚਾਰ ਗਾਵੈ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮ ਵਿਚਾਰ ਗਾਵੈ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨ ਖੇਹੇ ਗਾਵੈ ਕੋ ਜੀ ਲੈ ਫਿਰਦੇ ਗਾਵੈ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰ ਗਾਵੈ ਕੋ ਵੇਖੈ ਹਾਦਰਹ ਦੂਰ ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨ ਆਵੈ ਤੋਟ ਕਥ ਕਥ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ ਦੇਂਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥਕ ਪਾਹੀ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਕਾਹੇ ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹ ਨਾਨਕ ਵਿਖਸੈ ਵੇ ਪਰਵਾਹ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚ ਨਾਏ ਪਾਖਿਆ ਪਾਉ ਅਪਾਰ ਆਖਹੇ ਮੰਗੈ ਦੇਹ ਦੇ ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰ ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਐ ਜਿਤ ਦਿਸੈ ਦਰਬਾਰ ਮੋਹੋਂ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਐ ਜਿਤ ਸੁਣ ਕਰੇ ਪਿਆਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਚ ਨਾਉਂ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਮੀ ਆਵੈ ਕਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਨਾਨਕ ਏ ਵਹਿ ਜਾਣੀਐ ਸਭ ਆਪੇ ਸਚਿਆਰ ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰੱਖੀਐ ਪਾਉ ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਕਰ ਲੈ ਜਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ਗੁਰੀਸ਼ਰ ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬਰਮਾ ਗੁਰ ਪਾਰਵਤੀ ਮਾਈ ਜੇ ਹਉ ਜਾਣਾ ਆਖਾ ਨਾਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਈ ਗੁਰਾ ਇਕ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ ਤੀਰਥ ਨਾਵਾਂ ਜੇ ਤਿਸ ਪਾਵਾਂ ਬਿਨ ਭਾਣੇ ਕੇ ਨਾਈ ਕਰੀ ਜੇ ਤੀਸਰ ਠੋ ਪਾਈ ਵੇਖਾ ਬਿਨ ਕਰਮਾਂ ਕੇ ਮਿਲੈ ਲਈ ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ ਜੇ ਇਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੇ ਗੁਰਾ ਇਕ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਸੋਣੀ ਹੋਏ ਨਵਾਂ ਖੰਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਐ ਨਾਲ ਚੱਲੈ ਸਭ ਕੋਏ ਚੰਗਾ ਨਾਉ ਰਖਾਏ ਕਹੇ ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲਏ
ਜੇ ਤੈਸੋ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵਈ ਤਾਂ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੈ ਕਹਿ ਕੀਟਾਂ ਦਰ ਕੀਟ ਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੋਸਤ ਰੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਰੇ ਗੁਣਵੰਤ ਅਗੁਣ ਦੇ ਤੇ ਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਝਈ ਜੇ ਤੈਸ ਗੁਣ ਕੋਈ ਕਰੇ ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ ਸੁਣਿਆ ਧਰਤ ਤਬਲ ਆਕਾਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਦੀਪ ਲੋ ਪਾਤਾਲ ਸੁਣਿਆ ਪੋਹ ਨ ਸਕੈ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਈਸ਼ਵਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਇੰਦ ਸੁਣਿਆ ਮੁਖ ਸਾਲਾਹਣ ਮੰਦ ਸੁਣਿਆ ਯੋਗ ਜੁਗਤ ਧਨ ਭੇਦ ਸੁਣਿਆ ਸਾਸਤ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਸਤਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਅੜ ਛਟਕਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸੁਣਿਆ ਪੜਪੜ ਪਾਵੈ ਮਾਨ ਸੁਣਿਆ ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਸਰਾ ਗੁਣਾਂ ਕੇ ਗਾਸ ਸੁਣਿਆ ਸੇ ਕਬੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਣਿਆ ਦੇ ਪਾਵੈ ਰਾਸ ਸੁਣਿਆ ਹਾਥ ਹੋਵੈ ਸਗਾ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ਼ ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਾਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਜੇ ਕੋ ਕਹੇ ਪਿਛੈ ਪਛਤਾਏ ਕਾਗਦ ਕਲਮ ਨ ਲਿਖਣਹਾਰ ਮੰਨੇ ਕਾਬੇ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ ਮੰਨੈ ਸੁਰਤੋ ਵੈ ਮਨ ਬੁੱਧ ਮੰਨੈ ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੀ ਸੁਧ ਮੰਨੈ ਮੋਹ ਝੂਟਾ ਨਾ ਖਾਏ ਮੰਨੈ ਜਮ ਕੈ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾਈ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ ਮੰਨੈ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨ ਪਾਏ ਮੰਨੈ ਪਥ ਸੰ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਈ ਮੰਨੈ ਮਗ ਨ ਚੱਲੈ ਪੰਥ ਮੰਨੈ ਧਰਮ ਸੇ ਦੀਸਨ ਬੰਧ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ ਮੰਨੈ ਪਾਵੈ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਮੰਨੈ ਪਰਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰ ਮੰਨੈ ਤਰੈ ਤਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੰਨੈ ਨਾਨਕ ਪਵੇ ਨ ਭਿੱਖ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ ਪੰਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਚੇ ਪਾਵੈ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ ਪੰਚੇ ਸੋਹੈ ਹੈ ਦਰ ਰਾਜਾਨ ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ ਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਤੇ ਕਹਿ ਕਰਣੈ ਨਾਹੀ ਸੁਮਾਰ ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਭੂਤ ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਨ ਸੂਤ ਜੇ ਕੋ ਬੁੱਝੈ ਹੋਵੈ ਸਚਿਆਰੁ ਤਬਲੇ ਉੱਪਰ ਖੇਤਾ ਪਾਰੁ ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਪਰੈ ਹੋਰ ਹੋਰ ਦਿਸਦੇ ਭਾਰ ਤਲੈ ਕਵਣ ਜੋਰ ਜੀ ਜਾਤ ਰੰਗਾ ਕੇ ਨਾਵ ਸਭਨਾ ਲਿਖਿਆ ਬੁੜੀ ਕਲਾਮ ਇਹ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣੈ ਕੋਏ ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਤਾਣ ਸਵਾਲਿਓ ਰੂਪ ਕੀਤੀ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਕੌਣ ਕੂਤ ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਇਹ ਕੋ ਕਵਾਓ ਦਿਸਦੇ ਹੋ ਇਹ ਲਖ ਦਰੀਆਓ ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਏਕ ਵਾਰ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਸੰਖ ਜਾਪ ਅਸੰਖ ਪਾਉ ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ ਅਸੰਖ ਤਪਤਾਉ ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਖ ਵੇਦ ਪਾਠ ਅਸੰਖ ਜੋਗ ਮਨ ਰਹੇ ਉਦਾਸ ਅਸੰਖ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਅਸੰਖ ਸਤੀ ਅਸੰਖ ਦਾਤਾਰ ਅਸੰਖ ਸੂਰ ਮੋਹ ਪਖਸਾਰ ਅਸੰਖ ਮੋਹਨ ਲਿਬਲਾਏ ਤਾਰ ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਏਕ ਵਾਰ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਸੰਖ ਜਪ ਸੰਖ ਪਾਉ ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ ਸੰਖ ਤਪਤਾਉ ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਖ ਵੇਦ ਪਾਠ ਅਸੰਖ ਜੋਗ ਮਨ ਰਹੇ ਉਦਾਸ ਅਸੰਖ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਅਸੰਖ ਸਤੀ ਅਸੰਖ ਦਾਤਾਰ ਅਸੰਖ ਸੂਰਮੋ ਪਖਸਾਰ ਅਸੰਖ ਮੋਨ ਲਿਵਲਾਈ ਤਾਰ ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਏਕ ਵਾਰ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀਕਾਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧਕੋਰ ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਰਾਮ ਖੋਰ ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਰ ਜਾਹੇ ਜੋਰ ਅਸੰਖ ਗਲਵੜ ਹੱਤਿਆ ਕਮਾਹੀ ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰ ਜਾਹੇ ਅਸੰਖ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਫਿਰਾਹੀ ਅਸੰਖ ਮਲੇਸ਼ ਮਲ ਪਖ ਕਾਹੇ ਅਸੰਖ ਨਿੰਦਕ ਸਿਰ ਕਰਹਿ ਪਾਰੂ ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਏਕ ਵਾਰ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਸੰਖ ਨਾਭ ਸੰਖ ਥਾਵ ਅਗਮ ਗਮ ਸੰਖ ਲਉ ਅਸੰਖ ਕਹਿ ਸਿਰ ਪਾਰ ਹੋਏ
अखरी नाम अखरी साला अखरी ज्ञान की दिगुणगा अखरी लिखण बोलण बाण अखरा सरसन जोग बखाण जिनह लिखे तैस सिर नाई जय फरमाए देवत पाए जेता कीता तेता नाओ गण नावे नाही को थाओ कुदरत कवण काम विचार वारा न जावा एक बार जो तुद भावे साई पलीकार तू सदा सलामत निरंकार भरिए हथ पैर तन दे पानी तोत उतर सुखे मूत पलीती कपड़ होए दे साबून लिया उतोवे भरिए मत पापा कै संग तोपै नावे कै रंग पुन्नी पापी आखण नाहे कर कर करना लिख ल जा आपे बीज आपे ही खाह नानक हुक्मी आव जा तीरथ तप दया दत दान जे को पावे दिल का मान सुनया मनया मन कीता पाओ अंतरगात तीरथ मल नहाओ सब गुण तेरे मन आही कोए बिन गुण कीते भगत ना होए स्वास्थ्य आत बाणी भरमाओ सत सुहावन सदा मन चाओ कवण सवेला वक्त कवण कवण थित कवण वार कवण से रुति महा कवण जथो आकार वेलना पाईया पंडती जे हुआ लेख पुराण वक्त न पायो कादिया जे लिखण लेख पुराण थित वार न जोगी जाने रुत माह न कोई जा करता सिर ठीक साजे आपे जाने सोई किव कर आखा किव सलाही क्यों वरनी किव जाना नानक आखण सब को आखे एक दू एक सियाणा वड्डा साहिब वड्डी नाई कीता जा का होवै नानक जे कहो आप जाने अगे गया ना सोहै पाताला पाताल लख आगास आगास ओड़ कोड़ कपाल थके वेद कहने कवात सहस अठारह कैनक थे बास लू एक धात लेखा हुए ता लिखी है लेखा हुए विनाश नानक वड्डा आखी है आपे जाने आप सालाही सालाए ती सुरत न पाईया नदियां तै वह पवहें समुंद न जानिया समुंद शाह सुल्तान ग्रह सेती माल तन कीड़ी तुल न हो बनी जे तिस मनो न विसरै अंत न सिवती कहण न अंत अंत न करण देण न अंत अंत न वेखण सुनन न अंत अंत न जापै कै मन मंत अंत न जापै कीता आकार अंत न जापै पारावार अंत कारण केते बिल लाही ताकि अंत न पाए जाहे एहे अंत न जाने कोए बहुता कहिए बहुता होए बड़ा साहेब ऊंचा थाउ ऊंचे ऊपर ऊंचा नाउ हे बड़ ऊंचा होवै कोए तस ऊंचे कहो जाने सोए जे बड़ आप जाने आप आप नानक नदरी करमी दात बहुता कर्म लिखा न जाई बड़ा दाता तिल न तमाई केते मंगह जोध पार केत्या गणत नहीं विचार केते खपत टैं बेकार केते लै लै मुकुर पाहे केते मूर्ख खाही खाहे केत्या दुख भोग सद मार ए पे दात तेरी दातार बंद खलासी पाणे होए हो राख ना सकै कोए जे को खाए को आखण पाए ओ जाने जितियां मुँह खाए आपे जाने आपे दे आखे से पे के जिसनो बख्शे सिवत साला नानक बादशाही बादशाह अमुल गुण मुल वापार मुल वापारी मुल भंडार अमुल आवहे मुल लै जाहे मुल पाए मुला समाहे अमुल धर्म मुल दीवान मुल तौल मुल परवान अमुल बख्शीस अमुल निशान मुल कर्म मुल फरमान अमुलो अमुल आख न जाए आख आख रहे लिबलाई आखे वेद पाठ पुराण आखे पढ़े करें बख्याण आखे ब्रह्मे आखे अंब आखे गोपी तह गोविंद आखे ईश्वर आखे सिद्ध आखे किते किते बुद्ध आखे दानवे आखे देव आखे सुर नर मुन जन सेव केते आखे आखण पाए केते कह कह उठ उठ जाए एते कीते होर करहे दाख न सकै कई के जेवड़ पावै तेवड़ होए नानक जाने सचा सोए जे को आखे बोल बिगाड़ तां लिखी असर गवार गवार सो दार केहा सो कर केहा जितबै सर्व समाले वाजे नाद अनेक असंखा केते वावणहारे केते राग परिसं कही अनु केते गावणहारे
गावे तो न पौन पाणी बसंतर गावे राजा धर्म दुआरी गावे हैं चेत गुप्त लिख जाने लेख लिख धर्म विचारी गावे ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सवारी गावे हैं इंद्र दासन बैठे देवते आंदर नाले गावे हैं सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सति संतोखी गावे वीर करारी गावन पंडित पढ़ रखी सर जुग जुग वेदा नाले गावे मोहनी अमन मोहन सुरग मछ पयाले गावन रतन उपाय तेरे अड़सठ तीर्थ नाले गावे जोत मां बल सूरा गावे खाणी चारे गावे हैं खंड मंडल पर पंडाऊ कर कर रखे थारे सही तुदन गावे हैं जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चेतन आवन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहेब साचा साची नाई है पी होसी जाय न जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिन हो पाई कर कर वेखै गीता अपना जिव तिस दी वड़ियाई जो तिस पावै सोई करसी हुक्म ना करना जाई सो पातशाह अशाह पात साहिब नानक रहन रजाई मुंदा संतोख चरम बत जोड़ी ध्यान की करें बिभूत खिंथा काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीत है जग जीत आदेश दस आदेश आद नील अनाद अनाथ जुग जुग एको एस भुगत ज्ञान दया भंडारण गटगट वाज नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रद से देवरा साध संजोग बजोग दुकार चलावे लेखे आवे पाग आदेश दस आदेश आद नील अनाद अनाथ जुग जुग एको एस एका माई जुगत व्याई तिन चेले प्रवाण एक संसारी एक भंडारी एक लाई दीवान जिव तिस पावै तिवै चलावै जिव होवै फुरमान ओ वेखै ओ ना नजर न आवै बहुता हे विडाण आदेश तिस आदेश आद अनिल अनाद अनाथ जुग जुग एको एस आसन लोए लोए भंडार जो किछ पाए सो एका वार कर कर वेखै सिरजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश दस आदेश आद अनिल अनाद अनाथ जुग जुग एको वेस एक दूजी पौ लख हो है लख वै लख वीस लख लख गिड़ा आखी है एक नाम जगदीश ए तरह पद पबड़िया चढ़िया हुई अकीस सुनगल लाया काश कीटा आई रीस नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़ा ठीस आखण जोर चुपै नह जोर जोर न मंगण देण न जोर जोर न जीवन मरण न जोर जोर न राजमाल मन सोर जोर न सुरती ज्ञान विचार जोर न जुगती छुटै संसार जिस हथ जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम नीच न कोए राती रुती थिति वार पवन पाणी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मशाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथै सोहन पंच प्रवान नदरी करम पवै निशान खच पकाई उथै पाए नानक गया जापै जाए धर्म खंड का ओ धर्म ज्ञान खंड का अखो कर्म केते पवन पाणी वै संतर केते गान महेश केते वरमे घाड़त घड़ी है रूप रंग के वेश केतियां करम भूमि मेर केते केते तू उपदेश केते अंध चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेश केते देवदान मुन केते केते रतन समुंद केतियां खाणी केतियां बाणी केते बात निरिंद केतियां सुरती सेवक केते नानक अंत नंत ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड जिथै नाद विनोद कोड आनंद शर्म खंड की बाणी रूप जिथै काड़त घड़ीए बहुत अनूप तांकियां गल्लां कथियां न जाए जे को कहे पिछै पछताए तिथै घड़ीए सुरत मत मन बुद्ध तिथै घड़ीए सुरस दां की शुद्ध कर्म खंड की बाणी जोर तिथै होर न कोई होर तिथै जोत महाबल सूर तिन मह राम रहे अपार पूर तिथै सीतो सीता महिमा माए ताके रूप न कथने जाए
नाउ मरहे न ठग जाई जिनका राम बस मन माई तिथे भगत बस के लोग रहे आनंद सच मन सोई सच खंड बस निरंकार गर कर वेख नजर निहाल तिथे खंड मंडल वर पांड जे को कथ दंत न अंत तिथे लो लो आकार जिव जिव हुक्म तिव तिवकार वेख विकस कर विचार नानक कथना करड़ा सार जत पहारा तीर सुनियार अहरण मत विद हथियार पाओ खला अगन तपताओ पांडा पाओ अमृत तत टाल घड़िया शब्द सची टकसाल जिनको नदर करम तिनकार नानक नदरी नदर निहाल श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत दिवस रात दुए दाई दाया खेल सगल जागत चंग्याईया बुरियाईया वाचे धर्म दूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिन्नी नाम ते आया गए मसाकत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल जिन्नी नाम ते आया गए मसाकत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी ओम जाप साहिब एक ओंकार सतगुरु प्रसाद श्री वाहिगुरु जी की फतेह जाप श्री मुख वाक पातशाह दसवें शपै शांत दा प्रसाद चक्कर चिह नर बरंजा त्यर पात नहन दे रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत के अचल मूर्त अनुपव प्रकाश मितोज कहि जाए कोट इंद्र निराण शाशान गणि जाए तिर पवन महीप सुर नारय सुर नेत नेत मन तृण कहत तब सर्व नाम कथय कवन कर्म नाम वर्णत समत उपजंग प्रयात छंद नमास दंग काले नमास दंग कृपाले नमास दंग रूपे नमास दंग रूपे नमास दंग पेखे नमास दंग लेखे नमास दंग काये नमास दंग जाये नमास दंग गंजे नमास दंग पंजे नमास दंग नामे नमास दंग ठामे नमास दंग कर्मंग नमास दंग धर्मंग नमास दंग नामंग नमास दंग तामंग नमास दंग जीते नमास दंग पीते नमास दंग बाहे नमास दंग टाहे नमास दंग नीले नमास दंग नादे नमास दंग शेदे नमास दंग गादे नमास दंग गंजे नमास दंग पंजे नमास दंग उदारे नमास दंग पारे नमास दंग सुएकाय नमास दंग नेकाय नमास दंग भूते नमास दंग जूपे नमास दंग नर कर्मे नमास दंग नर भरमे नमास दंग नरदेशे नमास दंग नर पेशे नमास दंग नर नामे नमास दंग नर कामे नमास दंग नर दाते नमास दंग नर काते नमास दंग नर तूते नमास दंग भूते नमास दंग अलोके नमास दंग अशोके नमास दंग नर तापे नमास दंग थापे नमास दंग धर्माने नमास दंग नदाने नमास दंग गाहे नमास दंग बाहे नमास दंग तरवर्गे नमास दंग असर्गे नमास दंग परपोगे नमास दंग सजोगे नमास दंग रंगे नमास दंग पंगे नमास दंग गम्य नमास तास्तरम्य नमास दंग जलाश्रय नमास दंग नराश्रय नमास दंग जाते नमास दंग पाते नमास दंग मजबे नमास तास्तजबे अधेश दंग अधेशे नमास दंग पेशे नमास दंग नरतामे नमास दंग नरभामे नमो सर्व काले नमो सर्व दयाले नमो सर्व रूपे नमो सर्व भूपे नमो सर्व खापे नमो सर्व थापे नमो सर्व काले नमो सर्व पाले नमास्तास्व देवय नमास दंग पेवय नमास दंग जनमे नमास दंग सुबनमे नमो सर्व गौणे नमो सर्व पावणे नमो सर्व रंगे नमो सर्व पंगे नमो काल काले नमास्तास्व दयाले नमास दंग भरणे नमास दंग मरणे नमास दंग जरारंग नमास दंग कृतार नमो सर्व तंदे नमो वस्त्र बंदे नमास दंग नरसाके नमास दंग नरभाके नमास दंग रहीमे नमास दंग करीमे नमास दंग अनंते नमास दंग महंते नमास तास्तरागे नमास दंग सुहागे नमो सर्व सोखंग नमो सर्व पोखंग नमो सर्व कर्ता नमो सर्व हर्ता नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्व दयाले नमो सर्व पाले चाचरी छंद दग प्रसाद अरूप है अनूप है जू है पौ है अलेख है अपेख है अनाम है काम है अदेह है अपेह जीत है पीत है
ਧਰਮਾਨ ਹੈ ਨਿਧਾਨ ਹੈ ਧਰਮਰਗ ਹੈ ਸਰਗ ਹੈ ਅਨੀਲ ਹੈ ਨਾਦ ਹੈ ਜੈ ਆਜਾਦ ਹੈ ਜਨਮ ਹੈ ਵਰਨ ਹੈ ਭੂਤ ਹੈ ਪਰਨ ਹੈ ਅਗੰਜ ਹੈ ਪੰਜ ਹੈ ਚੂਜ ਹੈ ਚੰਜ ਹੈ ਮੀਕਰ ਫੀਕਰ ਦੰਦ ਹੈ ਬੰਦ ਹੈ ਨਿਰਬੂਜ ਹੈ ਅਸੂਜ ਹੈ ਅਕਾਲ ਹੈ ਅਜਾਲ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਹੈ ਜਾਹ ਅਨੰਤ ਹੈ ਮਹੰਤ ਹੈ ਅਲੀਕ ਹੈ ਨਿਰਸਰੀਕ ਹੈ ਨਿਰਲੰਬ ਹੈ ਸੰਭ ਹੈ ਗਮ ਹੈ ਜਮ ਹੈ ਭੂਤ ਹੈ ਸੂਤ ਹੈ ਅਲੋਕ ਹੈ ਅਸ਼ੋਕ ਹੈ ਕਰਮ ਹੈ ਪਰਮ ਹੈ ਅਜੀਤ ਹੈ ਪੀਤ ਹੈ ਬਾਹ ਗਾਏ ਮਾਨ ਨਿਧਾਨ ਅਨੇਕ ਹੈ ਫਰੇਕ ਹੈ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਛੰਦ ਨਮੋ ਸਰਬ ਮਾਨੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਨਿਧਾਨੇ ਨਮੋ ਦੇਵ ਦੇਵੇ ਅਪੇਖੀ ਅਪੇਵੇ ਨਮੋ ਕਾਲ ਕਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਗਾਉਣੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਉਣੇ ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਥੇ ਨਿਰਸੰਗੀ ਪਰਮਾਥੇ ਨਮੋ ਪਨ ਪਾਨੇ ਨਮੋ ਮਨ ਮਾਨੇ ਨਮੋ ਚੰਦਰ ਚੰਦਰੇ ਨਮੋ ਪਨ ਪਾਨੇ ਨਮੋ ਗੀਤ ਗੀਤੇ ਨਮੋ ਤਾਨ ਤਾਨੇ ਨਮੋ ਨਿਰਤ ਨਿਰਤੇ ਨਮੋ ਨਾਦ ਨਾਦੇ ਨਮੋ ਪਨ ਪਾਨੇ ਨਮੋ ਬਦ ਬਾਦੇ ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਮੇ ਸਮਾਧੀ ਸਰੂਪੇ ਪਰਭੰਗੀ ਪਰਮਾਥੇ ਸਮਾਧੀ ਬਭੂਤੇ ਕਲੰਕਾਰ ਰੂਪੇ ਕਲੰਕੰ ਬਿਨਾ ਨੇ ਕਲੰਕੀ ਸਰੂਪੇ ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਰੰਗ ਪਰਮ ਰੂਪੇ ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇ ਸ਼ਿਵਰੰਗ ਪਰਮ ਸਿਧੇ ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਰੰਗ ਪਰਮ ਬਿਰਧੇ ਨਮੋ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਬਾਣੇ ਨਮੋ ਅਸਤ੍ਰ ਮਾਣੇ ਨਮੋ ਪਰਮ ਗਿਆਤਾ ਨਮੋ ਲੋਕ ਮਾਤਾ ਅਪੇਖੀਏ ਪਰਮੇ ਅਭੋਗੇ ਭੁਗਤੇ ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇ ਸ਼ਿਵਰੰਗ ਪਰਮ ਜੁਗਤੇ ਨਮੋ ਨਿਤ ਨਾਰਾਇਣੇ ਗੁਰੂਰ ਕਰਮੇ ਨਮੋ ਪ੍ਰੇਤਾ ਪ੍ਰੇਤੋ ਦੇਵੇ ਸੁ ਧਰਮੇ ਨਮੋ ਰੋਗ ਹਰਤਾ ਨਮੋ ਰਾਗ ਰੂਪੇ ਨਮੋ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਨਮੋ ਭੂਪ ਭੂਪੇ ਨਮੋ ਦਾਨ ਦਾਨੇ ਨਮੋ ਮਨ ਮਾਨੇ ਨਮੋ ਰੋਗ ਰੋਗੇ ਨਮੋ ਤੰਗ ਸਨਾਨੇ ਨਮੋ ਮੰਤਰ ਮੰਤਰੰਗ ਨਮੋ ਜੰਤਰ ਜੰਤਰੰਗ ਨਮੋ ਇਸ਼ਟੇ ਇਸ਼ਟੇ ਨਮੋ ਤੰਤਰ ਤੰਤਰੰਗ ਸਦਾ ਸੱਚ ਦਾ ਆਨੰਦ ਸਰਬੰਗ ਪ੍ਰਣਾਸੀ ਸਦਾ ਸਿੱਧ ਦਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਸਦਾ ਸੱਚ ਦਾ ਆਨੰਦ ਸਰਬੰਗ ਪ੍ਰਣਾਸੀ ਅਨੂਪੇ ਰੂਪੇ ਸਮਾਜ ਤੁਲਨਵਾਸੀ ਸਦਾ ਸਿੱਧ ਦਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਬ੍ਰਿਧ ਕਰਤਾ ਅਦ ਉਰਧ ਅਰਧੰਗ ਅਗੰਗ ਉਹ ਘਰਤਾ ਪਰੰਗ ਪਰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰੰ ਪਰੋਸ਼ ਪਾਲੰ ਸਦਾ ਸਰਬਦਾ ਸਿੱਧ ਦਾਤਾ ਦਿਆਲੰ ਅਛੇਦੀ ਅਪੇਦੀ ਅਨਾਮੰ ਅਕਾਮੰ ਸਮਸਤੋ ਬਰਾਜੀ ਸਮਸਤਾ ਸਦਾਮੰ ਤੇਰਾ ਜੋਰ ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ ਜਲੇ ਹੈ ਥਲੇ ਹੈ ਪੀਤਾ ਵੇ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਜੂਹਾਂ ਦੇ ਸਭੇ ਸੈਂ ਭੁਜੰਗ ਪਰਿਆਤ ਛੰਦ ਅਗਾਧੇ ਅਬਾਧੇ ਅਨੰਦੀ ਸਰੂਪੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਮਾਨੇ ਸਮਾਜ ਤੀਨ ਰਾਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਤੁੰਗ ਨਰਨਾਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਤੁੰਗ ਪਰਮਾਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਤੁੰਗ ਅਗੰਜੇ ਨਮਾਜ਼ ਤੁੰਗ ਪੰਜੇ ਨਮਾਜ਼ ਤੁੰਗ ਅਕਾਲੇ ਨਮਾਜ਼ ਤੁੰਗ ਅਪਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਦੇਸੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਪੇਸੇ ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਾਜੇ ਨਮੋ ਸਾਧ ਸਾਜੇ ਨਮੋ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹੇ ਨਮੋ ਮਾਂ ਮਾਹੇ ਨਮੋ ਗੀਤ ਗੀਤੇ ਨਮੋ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੀਤੇ ਨਮੋ ਰੋਗ ਰੋਖੇ ਨਮੋ ਸੁਖ ਸੁਖੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਰੋਗੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਭੋਗੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਜੀਤੰਗ ਨਮੋ ਸਰਬ ਪ੍ਰੀਤੰਗ ਨਮੋ ਸਰਬ ਗਿਆਨੰ ਨਮੋ ਪਰਮਤਾਨੰਗ ਨਮੋ ਸਰਬ ਮੰਤਰੰਗ ਨਮੋ ਸਰਬ ਜੰਤਰੰਗ ਨਮੋ ਸਰਬ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੰਗ ਨਮੋ ਸਰਬ ਕ੍ਰਿਸ਼ਟੰਗ ਨਮੋ ਸਰਬ ਰੰਗੇ ਦਰਭੰਗੀ ਅਨੰਗੇ ਨਮੋ ਜੀਵ ਜੀਵੰ ਨਮੋ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਅਖਿਜੇ ਅਭਿਜੇ ਸਮਾਤੰ ਪ੍ਰਸਜੇ ਕਿਰਪਾਲੰ ਸਰੂਪੇ ਕੋ ਕਰਮੰ ਪ੍ਰਣਾਸੀ ਸਦਾ ਸਰਬਦਾਰ ਦਿਸਦੰ ਨਿਵਾਸੀ ਚਰਪਟ ਛੰਦ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਰਮੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਰਮੇ ਅਖਲ ਜੋਗੇ ਅਚਲ ਭੋਗੇ ਅਚਲ ਰਾਜੇ ਅਟਲ ਸਾਜੇ ਅਖਲ ਧਰਮੰ ਲਾ ਕਰਮੰ ਸਰਵੰ ਦਾਤਾ ਸਰਵੰ ਗਿਆਤਾ ਸਰਵੰ ਪਾਨੇ ਸਰਵੰ ਮਾਨੇ ਸਰਵੰ ਪ੍ਰਾਣੰ ਸਰਵੰ ਤ੍ਰਾਣੰ ਸਰਵੰ ਭੂਤਾ ਸਰਵੰ ਜੁਗਤਾ ਸਰਵੰ ਦੇਵੰ ਸਰਵੰ ਪੇਵੰ ਸਰਵੰ ਕਾਲੇ ਸਰਵੰ ਪਾਲੇ ਰੂਆਲ ਛੰਦ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਦਿ ਰੂਪਨ ਆਦਿ ਮੂਰਤ ਯੋਨ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰੂ ਸਰਵ ਮਹਾਂਤਰਮਾਨ ਦੇਵਾ ਬੇਵਾਦ ਉਦਾਰੂ ਸਰਵ ਪਾਲਕ ਸਰਵ ਕਾਲਕ ਸਰਵ ਕੋਪਨ ਖਾਲੂ ਜਤਰ ਤਤਰ ਬਰਾਜ ਹੀ ਅਵਦੂਤ ਰੂਪ ਪ੍ਰਸਾਲ ਨਾਮ ਠਾਮ ਨਾ ਜਾਤ ਜਾ ਕਰ ਰੂਪ ਰੰਗ ਨਾ ਰੇਖੋ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਉਦਾਰ ਮੂਰਤ ਜੋ ਨਾ ਦਸੇਖ ਦੇਸ ਔਰ ਨਾ ਭੇਸ ਜਾ ਕਰ ਰੂਪ ਰੇਖ ਨਾ ਰਾਗ ਜਤਰ ਤਤਰ ਦਿਸਾ ਬਿਸਾ ਹੋਏ ਫੈਲੇ ਅਨੁਰਾਗ ਨਾਮ ਕਾਮਹੀਨ ਪੇਖਤ ਨਾਮੂ ਨ ਜਾਏ ਸਰਵਮਾਨ ਸਰਵਤਰ ਮਾਨ ਸਦੈਵ ਮਾਨ ਤਾਏ ਏਕ ਮੂਰਤ ਅਨੇਕ ਦਰਸ਼ਨ ਕੇਂਦ ਰੂਪ ਅਨੇਕ ਖੇਲ ਖੇਲ ਅਖੇਲ ਖੇਲ ਅੰਤ ਕੋ ਬਰੇਕ ਦੇਵ ਬੇਵ ਨਾ ਜਾਨੀ ਜੈ ਬੇਦਰਖ ਦੇਵ ਰੂਪ ਰੰਗ ਨਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਸੋ ਜਾਨੀ ਕਹਿ ਜੇਵ ਤਾਤ ਮਾਤ ਨਾ ਜਾਤ ਜਾਕਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਬਹੀਨ ਚੱਕਰ ਬਕਰ ਫਿਰੈ ਚਦਰ ਜਾਕ ਮਾਨਹੀ ਪੁਰਦੀਨ ਲੋਕ ਚੌਦਾਂ ਕੇ ਵਿਖੇ ਜਗ ਜਾਪੀ ਜੈ ਜਾਪ ਆਦਿ ਦੇਵ ਨਾਦ ਮੂਰਤ ਸਭ ਸਭ ਜੈ ਥਾਪ
பாரம் ரூப பிரீத முகூர்த்த பூர்ண பருக்க பாரு சர்வஸ்வரச்சியோ சுயம் பவகர்ந்த பஞ்சனஹாரு காலஹீன் கலாசஞ்சபுத கால்புருக தேச தர்ம தாமச பரமராத பூதலாக பேச ஆங்கராகனர் அங்கஜாக ஏஜாத்பாதன நாமம் கர்வகஞ்சன் தோஷ பஞ்சன முகத்ததாயக காம ஆபரூபமீ கான சதைக புருகவதூத கர்வகஞ்சன் தோஷ பஞ்சன ஆதிரூப சூத ஆங்கஹீன பங்கநாதம ஏக புருக பாரு சர்வலாயக சர்வகாயகோ சர்வகோபுரத பாரு சர்வகந்த சர்வஹந்த சர்வதேயன பிரேகோ சர்வசாஸ்திர ந ஜானே ஜெய ரூபராங்கார ரேகோ பரம் வேத புராண ஜாக நேத பாகத நேத கோட் சிமர்த புராண சாஸ்திர உனா ஆவை பௌ சேத மத பார சந்த தவ பிரசாத் குணகானோதார மகமா பார ஆசன பாங்கு உபமான அங்கு அனுபவ பிரகாஷ நிசன அநாசு ஆஜான பாஹ ஷானஷா ராஜந்த ராஜு பானன பானு தீபான தீப உபமா மான் இந்திரான் இந்திர பாலான் பாலு ரங்கான் ரங்கு காலன் கால் ஆனபூதயாங்கு ஆபாபாங்கு கத்மித பாரு குணகனுதாரு முன்கன பிரணாமு நிருபண்ய காமு அத்தோத்த பிரச்சாண்டு மிதுகதாண்ட ஃபலஸ்ய கர்ம அதிரேஷ்ட தர்ம சர்பாபரண அடைய ஆனதாண்ட பாடையஞ்ச அஜ்ரீ சாந்த தவ பிரசாத் கோபிந்தே முகந்தே அவதாரிய பா உபாரி ஹரியங் கரியங்கர் நாமிய காமே புஜங் பிரயாதி சாந்த சத்ர்ஜக்கர் கர்த்தா சத்ர்ஜக்கர் ஹர்த்தா சத்ர்ஜக்கர் தானே சத்ர்ஜக்கர் தானே சத்ர்ஜக்கர் வரதி சத்ர்ஜக்கர் பரதி சத்ர்ஜக்கர் காலே சத்ர்ஜக்கர் பாலே சத்ர்ஜக்கர் பாசே சத்ர்ஜக்கர் வாசே சத்ர்ஜக்கர் மானே சத்ர்ஜக்கர் தானே சாச்சரி சாந்த நா சத்ரே ந மித்ரே ந பரமங் ந பித்ரே ந கர்மங் ந காயே ந அஜன்மங் அஜாயி நா சித்ரா ந மித்ரா பரயாம் பவித்ரா பரதிசா தேசா ரிசா கிருசாய் பகவதி சாந்த தவ பிரசாத் காசதே கே ஆசஜ தேசா கே அபஜ பேசா கே அகஞ்ச கர்ம கே அபஜ பரம கே அபஜ லோக கே அதத சோக கே அவதூத் வர்ண கே அவதூத் கர்ண கே ராஜங் பிரவாஹே கே தர்மங் துஜாயே கே அசோக வர்ண கே சர்பா பர்ண கே ஜகதங் கிருதியே கே சத்ரங் சத்ரியே கே பிரம்மங் ஸ்வரூப கே அனுபவன் உபாய கே ஆத அதிபாய கே ஆபேவாய கே சதுரங் விஹீனாய கே கதீனாய கே ரோஜி ரிஜாகர் ஹி மர்ஹாகாய கே பாக் பேயவாய கே கைபுல் கைவாய கே ஆபுல் குணாய கே சாஹன் சாஹாய கே காரண புனந்தாய கே ரோஜி தேந்தாய கே ராஜ கரீமாய கே கர்மங் கரீமாய கே சர்வங் கலியாய கே சர்வங் தலியாய கே சர்வத்தர் மானியாய கே சர்வத்தர் தானியாய கே சர்வத்தர் கௌனாய கே சர்வத்தர் பௌனாய கே சர்வத்திர தேசாய கே சர்வத்திர பேசாய கே சர்வத்திர ராஜாய கே சர்வத்திர சாஜாய கே சர்வத்திர தீனாய கே சர்வத்திர லீனாய கே சர்வத்திர ஜாஹோ கே சர்வத்திர பாஹோ கே சர்வத்திர தேசாய கே சர்வத்திர பேசாய கே சர்வத்திர காலாய கே சர்வத்திர பாலாய கே சர்வத்திர ஹந்தா கே சர்வத்திர கந்தா கே சர்வத்திர தேசாய கே சர்வத்திர பேசாய கே சர்வத்திர ராஜாய கே சர்வத்திர சாஜாய கே சர்வத்திர தீனாய கே சர்வத்திர லீனாய கே சர்வத்திர ஜாஹு கே சர்வத்திர பாஹு கே சர்வத்திர தேசாய கே சர்வத்திர பேசாய கே சர்வத்திர காலாய கே சர்வத்திர பாலாய கே சர்வத்திர ஹந்தா கே சர்வத்திர கந்தா கே சர்வத்திர பேக்கி கே சர்வத்திர பேக்கி கே சர்வத்திர காஜ

पर भक्त प्रवाह है सुजोत सुधा है सदा गुण स्वरूप है पेदी अनूप है समस्त प्राज है सदा सर्व साज है समस्त सुलाम है सदैव काम है निर्बाध स्वरूप है गाद है अनूप है उंगाद रूप है नाद स्वरूप है नंगी अनाम है त्रिपंगी त्रकाम है त्रिभर्गं त्रिभादे गंजे अगाधे शुभं सर्वभाग्य सुसर्वानुरागे त्रिपुंग स्वरूप है सज सुधा गिनर्गं प्रणास है पृथ्वी प्रवास है निरोगत प्रवाह है सुजोत सदा है सदैव स्वरूप है वेदी अनूप है समाज तो प्राज है सदा सर्वसाज है समाज तुल सलाम है सदैव काम है निर्बाध स्वरूप है गाद है अनूप है ओवंगाद रूप है नाद स्वरूप है नंगी अनाम है त्रिभंगी त्रिकाम है निर्भंगी स्वरूप

विभवत स्वरूप प्रज्योत अनूप है, निरुक्त सदा है विभवत प्रभा है, अनुक्त स्वरूप प्रज्योत अनूप है, चाचरी संग अपांग है, अनंग भेखा लेख है, परम कर्म अनाद जुगाद है, अनाद अजय है, आजाद है, अजय है, अभय है, भूत है, दूत है, अनाश है, उदास है, तंध है, बंध है, अपागत है, विरक्त है, नाश है, प्रकाश है, नचंत है, सुनंत है, लेख लेख है, लेख है, पीघ टाय गाय, समर है, गंभ है, नीला नाद है, नित नित जात जाद है, चरपट छंद दव प्रसाद, सर्वंग हंता सर्वंग गंता, सर्वंग ख्याता सर्वंग ज्ञाता, सर्वंग हर्ता सर्वंग कर्ता, सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राणंग, सर्वंग कर्मंग सर्वंग धर्मंग, सर्वंग युक्ता सर्वंग मुक्ता, रसावल छंद दव प्रसाद, नमो नरक नाशे सदैव प्रकाशे, अनंगंग स्वरूपे अपंगंग बभूते, परमाथंग परमाथे सदा सर्वसाथे, अगाध स्वरूपे निर्वाध बभूते, अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे, निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे, न पुत्र है न पुत्र है न सुत्र है न मित्र है, न दाता है न माता है, न जाता है न पाता है, न रसाकं श्री गाय मित्र ही गाय, सदैव प्रवाह जय अजाहे, भगवती छंद दव प्रसाद, कि जहर जूर है कि हाजर है जूर है, मेसल सलाम है समाज गुलाम है, कि सब दिमाग है कि उसनल चराग है, कि कामल करीम है कि राज करीम है, कि रोजी दहन है कि राज ग्रहण है, करीमल कमाल है कि जरो जमाल है, गजरंग प्रकाश है कि मित्र सुहास है, कि आज विस्वरूप है कि मित्र अवभूत है, कि मित्र पदा है कि आदम प्रभा है, कि अचलंग अनांग है कि मित्र अपांग है, मद पार छंद दव प्रसाद, मुन मन प्रणाम गुन गण मधाम, हर भरिया गांजू हर नर पर पांजू, गण गण प्रणाम मुन मन सलाम, हर नरिया खांडु भर नरिया मांडू, गण पवनाश मुन मन प्रकाश, गुन गण प्रणाम जल थल मधाम, आंश जी अंग आसन पांग उपमा पार गात्मित उधार, जल थल मांडू दिस विश्व पांडु, जल थल महंत दिस विश्व अंत, अनुपव नाश द्रत दर्द राश, राजन बाहरी कैसदाह, ओंकार आदि कथनी अनाद, खल खंड ख्याल गुरुवर अकाल, कार कर प्रणाम चित चरण नामे, अंश जगात जजन वाद, अंशन जगात अंठुट भंडार, अंठट पार अडीठ धर्म अद डीठ कर्म, अण प्रण नंत दम अंतर, हर बोल मना छंद दव प्रसाद, करुणालिया है अरकालिया है, खलखंडन है मैं मंडन है, जगदीश्वर है परमेश्वर है, कल कारण है सर्ववारण है, जगत के धरण है जग के करण है, मन मान्य है जग जान्य है, सर्वं पर है सर्वं कर है, सर्व पास है सर्वनाश है, करुणा कर है विश्वम पर है, सर्वेश्वर है जगदेश्वर है, ब्रह्मांड है खल खंड है, परते पर है करुणा कर है, अजपा जप है थप थप है, अग्रता कृत अमृत अमृत है, अमृता मृत है करुणा कृत है, अग्रता कृत धरणी धृत है, अमृतेश्वर है परमेश्वर है, अकृता कृत अमृत अमृत है, अजपा कृत अमृत अमृत है, निर्नायक है खल गायक है, विश्वम पर है करुणालय है, निर्विनायक है सर्वपायक है,

भंजन है, रंगंजन है, रबदापन है, जबजापन है, आकलन करता है, सर्वा करता है, अर्धार है, परमात्मा है, सर्वात्मा है, आत्मवासा जल के जास है, भजंग पर आदिशांग। नमो सूर्य सूर्य, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे, नमो अंधकारे, नमो तेज तेजे, नमो बृंद बृंदे, नमो बीज बीजे, नमो राज संग दाम संग शांत रूपे, नमो परम सत्संग सत्संग स्वरूपे, नमो योग योगे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो मंत्र मंत्रे, नमो ध्यान ध्याने, नमो युद्ध युद्धे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो भोज भोजे, नमो पान पाने, नमो कलयकर्ता, नमो शांत रूपे, नमो इंद्रेन्द्रे नादिंब भूते, कलंकार रूपे, अलंकार अलंके, नमो आशासे, नमो भांग भंगे, अपंगी स्वरूपे, अनंगी नामे, त्रिभंगी त्रिकाले, अनंगी कामे, एक श्री शांब अजय अलय पै वै भूज नाश गास, अगंज बंज रख पख, अकाल दयाल अलेख पेख, अलेख पेख अनाम काम। अगाटाह अनाथि ब्रह्मा तेजो निमोनि, नराग्य नरंगे न रूपे न रेखे, अगर्मग बर्मग गंजे लेखे, भुजंग प्रयाद छंद। नवासल प्रणामे समासल प्रणासे, गंजल नामे समासल निवासे, नृगामंग भूते समासल स्वरूपे, स्वकर्मंग प्रणासी सुधर्मंग भूते, सदांग संगे अपांगंग भूते, चतुर्चक्रवर्ती चतुर्चक्र भुगते, सुयं पव सुभंग सर्वदा सर्वजुगते, दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे, सदांग संगे अपांगंग भूते। सतनाम श्री वाहिगुरु जी, ओताव प्रसाद सवैये, ओंकार सतगुर प्रसाद, ताव प्रसाद सवैये, पातशाह दसवीं श्रावक सुध समूह दान के, देख फिर कर जुग जति के, सूर सरार्दन सुध सदा देख, संत समूह ने गति के, सारे देख को देख रहे हो, माता को न देखे प्राण पति के। श्री भगवान की पाई कृपा हूं, ते एक रति बिन एक रति के, माते मदंग जरे अर संग अनूप संग सुरंग सवारी, गोट तरंग गुरंग से कूदत, बन के गन को जात नवारी, भारी भजान के भूप बलिवद, अन्यावस्थी सुना जात विचारी, ते पाए तो काम पाए भूपत, अंत को नांगी पाए पदारी, जीत फिर सब देश दिशान को, बाज तौल मदंग नगारी, गुंजत गुड के जान के सुंदर, हंस तह हजराज हजारी, भूत भवैख भगवान के भूपत, गण गणे नहीं याद बिचारी, सरी पा सरी भगवान भजे बिन, अंत को अंत के दाम सुधारी, तीर्थ रान उदय दमदान, सुसंजम नियम अनेक वसेख है, वेद पुराण करे पुराण, जमीन जबान समान के बेख है, पौन आहार जद यदार, सब सब चार हजार के देख है, सरी भगवान भजे बिन भूपत, एक रति बिन एक ना लेख है, शुद्ध सुपाद रंत दुपास, सासना द्रजान दलेंगे, भारी गुमान परे मन मह कारू, पर्वत बांखल न हलेंगे, तोर हरीन मरोर मवासन, माध्यम दंग अनुमान मलेंगे, सरी पद सरी भगवान कृपा बेन, त्याग जहान निदान चलेंगे, वीर पार बटे बरियार, बेचारे सर की धार बछैया, तोर देश मलंद मवासन, माते जान के मान मलैया, गड़ गडांग दौड़ हार, सुपादनी जगदार लवैया, साहेब श्री सर सब कुछ नायक, जाज कनेसु एक दवैया, दानव देव साचर भूत भवैख भवान पेंगे, फन प्रतापन बाढ़ जात, दुन पापन केव पुंज खपाएंगे, साधु समूह प्रसन्न फिराए, जग सदर सवैव लोग चपाएंगे, मान वेंद्र अगजेंद्र निरात, बजौंतर लव को राज कराएंगे, कोट स्नान गजात गदान, अनेक स्वंबर साज भरायेंगे, ब्रह्म महेश्वर विषम सजीपत, अंत पदे जम पाद परेंगे, जे नार श्रीपत के बर सह पाग, ते नर फिर न दे धरेंगे, कहाँ पहो जो दो लोचन मूंद कह बैठे हो, भगत ध्यान लगायो, न हाथ फिर लिये सात समुद्र, न लोग गयो पर लोग गवायो, बास कियो बखियान सो बैठ गए, ऐसे ही ऐसे सो बैठ बतायो, साच कहो सन लेहो सब है, जिन प्रेम कियो तनि प्र पायो, काहू ले पाहन पूज धरो सिर, काहू ले लिंग कर लटकायो, काहू लखे वर वाची दिशा में, काहू पिछाक सी सुनवायो, को बदान को पूज दे पास, को मरदान के पूजन गायो, पूर गया और जो सभी जग, श्री भगवान की पाई कृपाऊ, श्री भगवान की पाई कृपाऊ, ते
मानवेंद्र चंदन रात भजन तरलोक राज करेंगे कोट स्नान गजाद गदान अनेक स्वयंवर साज भरेंगे ब्रह्म महेश्वर विष्णु सची पात अंत फसे जम फास भरेंगे जे नर श्री पद के पर सह पग ते नर फिर न देह धरेंगे कहां पयो जो दो लोचन मूंद कह बैठे हो भगत ध्यान लगायो नहात फिर लिये सा समुद्रन लोग गए ऊपर लोग गवायो बास की उपख्यान सु बैठ के ऐसे ही ऐसे सु बैठ बतायो साज कहूं सुन ले सब जिन प्रेम की हो तनि प्रपायो काहू ले पान पोईतर सिर काहू ले लिंग रे लटकायो काहू लख्यो हर वाची दिशा में काहू पिछा कोशी सुनवायो कौ बदान को पूजत है पास कौ मृतान

पुरवाण जो प्रभु पाया सेब चखण जंत जिन्हें हर त्याया अमृत नाम निदान भोजन खाया संत जना की रेण नानक अमृत नाम निदान भोजन खाया संत जना की तूर मस्तक लाया नानक पै पुनीत हर तीर्थ नाया सतनाम।

गुर सेवा ते सुख रूप जाए, फिर दुख ना लगा आए। जमण मरना के मिट गया, काल है काल किस ना बसाए। गुर सेवा ते सुख रूप जाए, फिर दुख ना लगा आए। जमण मरना मिट गया, काल है काल किस ना बसाए। हर सेती मन रब रहया, सच्चे रहया समाए। नानक हां बलिहारी तन का, जो चलन सतगुर पाए। महला तीजा, बिन शब्द शुद्ध न हो गई, जे अनेक करै सिंगार। फिर की सार न जाणै, दूजै भाई प्यार। साक शुद्ध साक लखणी, नानक नारी विच कुनार। पौड़ी हर हर अपनी दया कर, हर बोली बैणी। हर नाम ते आई हर उचरार, लाहा लैणी। जो जपदे हर हर दिन दा, जो जपदे हर हर दिन सरात, तिन हौ कुरबैणी। जिन्ना सतगुर मेरा प्यारा आराध्या, तिन जान देखा नैणी। हाँ वारिया अपने गुरु का, जिन मेरा हर सजन मिलया सैणी। जिन्ना में सत

का जन मेरा हर सजन मिलया सैनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग सतगुरां दी साजी नवाजी गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जीओ, सतगुरु जी की अपार कृपा सदका अमृत वेले पातशाह जी के पावन दरबार दीआं हाजरियां भरन दा, गुरु पातशाह जी की सेवा करन दा, अमृतमई बाणी पढ़न सुनन दा सुभागा समा प्राप्त होया। सतगुरु जी का कोटान कोट धन्नवाद। अज ऐतवार है, दिन के दीवान सजणगे। अज के दीवानां दे विच धन धन श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज जी मीरी पीरी के मालक का प्रकाश दिहाड़ा अते तखत श्री अकाल तख्त साहब जी की सिरजना दिवस बड़ी श्रद्धा भावना दे नाल मनाया जाएगा। अज के दीवानां दे विच सतगुरु साहब श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी का प्रकाश दिहाड़ा अते श्री अकाल

नानक तग न टुटाई जे तग हुए जुर महला पहला नाय मन पत उपजा साला सचूत दरगाह अंदर पाई तग न टूट।

हो पंड मुआ पंड पालिए फंड वै बंधान सो क्यों मंदा आखिए जित जमै राजान पंडो ही पांडे उपजे पंडे बाय न कोय नानक पंडे बाहरा एको सच्चा सोय जित मुक्त दाता लाहिए पग रती चार ना

बिन नावै पत जाए अष्टपति। दस वस्तु ले पाछे पावै, एक वस्त कारण भी खोट गवावै। एक पीना दे दस पी हिर ले, तो मूड़ा कहो का करे। जिस ठाकुर से ना ही चारा, ताको कीजे सब नमस्कारा। जाके मन लागा प्रामीठा, सर्व सुख ताहू मन उठा। जिस जन अपना हुक्म मनाया, सर्व थोक नानक तिन पाया। अगंत साह अपनी दे रास, साथ पीत परतै आनंद उलास। अपनी अमान कछ बहुर साह ले, अज्ञानी मन रोस करे। अपनी प्रतीत आप ही खोवे, बहुर उसका विश्वास न होवे। जिसकी बस तिस आगे रख है, प्रभु की आज्ञा माने मत है। उससे चौगन करे निहाल, नानक साहिब सदा दयाल। अनक भांत माया के हेत, सर पर होत जान अनेत। बिरख की छाया स्यों रंग लावे, ओ बिनसै ओ मन पछतावे। जो दिसै सो चालन हार, लप रहो तह अंत अंधार। बटाऊ स्यों जो लावे नेहे, ताको हाथ न आवे के। मन हार के नाम की प्रीत सुखदाई, कर कृपा नानक आप ले लाई। मिथ्या तन तन कुटुंब सबाया, मिथ्या हो मैं ममता माया। मिथ्या राज जोबन तन माल, मिथ्या काम क्रोध विकराल। मिथ्या रथ हस्ती अश्व बस्त्रा, मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता। मिथ्या त्रोम हो अभिमान, मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान। अस्थिर भगत साध की शरण, नानक जप जप जीवे हर के चरण। मिथ्या श्रवण पर निंदा सुने, मिथ्या हस्त पर दर्ब को हिरे। मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रिया रूपाद, मिथ्या रचना भोजन अनस्वाद। मिथ्या चरण पर विकार को तावे है, मिथ्या मन पर लोभ लुभावे। मिथ्या तन नहीं पर उपकारा, मिथ्या बासलेत विकारा। बिन बुझे मिथ्या सब है, सफल देह नानक हर हर नाम ले। बिरथी साकत की आरजा, साज बिना कह होत सूचा। बिरथा नाम बिना तन अंध, मुख आवत ता कह दुर्गंध। बिन सिमरन दिन रैन बिरथा बिहाए, मेघ बिना ज्यों खेती जाए। गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम, ज्यों कृपण के निरारस दाम। तन तन ते जन जेह कट बस्यो हर नाउ, नानक ता कह बल बल जाऊ। रहत अवर कछ अवर कमावत, मन नहीं प्रीत मुखों गंडलावत। जानन हार प्रभु परवीन, बाहर पेख ना काहू पीन। अवर उपदेश है आप ना करे, आवत जावत जन्मै मरे। जिसके अंतर बसै निरंकार, तिसकी सीख करे संसार। जो तुम पाणे तिन प्रभ जाता, नानक उन जन चरण प्राता। करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने, अपना किया आपे माने। आपे आप आप करत निबेरा, किसे दूर जनाव किसे बुझावत नेरा। उपाव स्याण सगल ते रहत, सब कस जाने आत्म की रहत। जिस पावे तिस लय लड़ लाए, थान सुनंत रहा समाए। सो सेवक जिस कृपा करी, निमुख निमुख जप नानक हरी। श्लोक। काम क्रोध हर लोभ मोह, बिनस जाए अहमेव। नानक प्रभ शरणागति, कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपति। जे प्रसाद सती अमृत खाहे, तिस ठाकुर को रख मन माहे। जे प्रसाद सुगंध तन लावे, तिस को सिमरत परम गत पावे। जे प्रसाद बसै सुख मंदर, तिसै त्याय सदा मन अंदर। जे प्रसाद ग्रह संग सुख बसना, आठ पहर सिमरो तिस रसना। जे प्रसाद रंग रस भोग, नानक सदा त्याय त्यावन जोग। जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावे, तिसै त्यागत अवर लुभावे। जे प्रसाद सुख से सोई जाए, माने आठ पहर ता का जस गावी जाए। जे प्रसाद तुझ सब को माने, मुख ताको जस रसन बखाने। जे प्रसाद तेरो रहता धर्म, मन सदा त्याए केवल पार ब्रह्म। प्रभ जी जप दर गए मान पावे, नानक पद सेती कर जावे। जे प्रसाद आरो कंचन देही, लेव लावो तिस राम स्नेही। जे प्रसाद तेरा ओला रहत, मन सुख पावे हर हर जस कहत। जे प्रसाद तेरे सगल छिद्र ठाके, मन सरणी पर ठाकर प्रभ ताके। जे प्रसाद तुझको ना पहुँचे, मन साथ साथ सिमरो प्रभ ऊचे। जे प्रसाद पाई दुर्लभ देहे, नानक ताकी भगत करे। जे प्रसाद अपूखन पहरी जाए, मन तिस सिमरत क्यों आलस की जाए। जे प्रसाद अश्वहस अश्वारी, मन तिस प्रभ को कबहू ना बिसारी। जे प्रसाद बाग मिलक तना, राग प्रोए प्रभ अपने मना। जिन तेरी मन बंत बनाई, उठत बैठत सत सह त्याई। तिसे त्याए जो एक अलख है, इहां ऊहा नानक तेरी रख है। जे प्रसाद करें पुन बहुदान, माना तहर कर तिसका ध्यान। जे प्रसाद तू आचार व्यवहारी, तिस प्रभ को साफ साफ चितारी। जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप,
सो प्रभ सिमर सदा अनूप। जे प्रसाद तेरी नी की जात, सो प्रभ सिमर सदा दिन रात। जे प्रसाद तेरी पत्र है, गुर प्रसाद नानक जस कह। जे प्रसाद सुनह करन नाद, जे प्रसाद देखे विस्माद। जे प्रसाद बोले है अमृत रसना, जे प्रसाद सुख सहजे बसना। जे प्रसाद हस्तकर चले है, जे प्रसाद संपूर्ण फल है। जे प्रसाद परम गत पावे है, जे प्रसाद सुख सहज छमावे। ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लागो, गुर प्रसाद नानक मन जागो। जे प्रसाद तू प्रगट संसार, तिस प्रभ को मूल ना मनो विसार। जे प्रसाद तेरा प्रताप, रे मन मूर तू ताको जाप। जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे, तिसै जान मन सदा हजूरे। जे प्रसाद तू पावे साच, रे मन मेरे तू ता स्यू राच। जे प्रसाद सब की गत होए, नानक जाप जपै जप सोए। आप जपाए जपै सुनाओ, आप गवाए सो हर गुण गाओ। प्रभ कृपा ते होए प्रगास, प्रभु दया ते कमल विगास। प्रभ सो प्रसन्न बसै मन सोए, प्रभ दया ते मत उत्तम होए। सर्व निधान प्रभ तेरी मया, आपहु कछु न किन्हु लया। जित जित लावो तित लगे हर नाथ, नानकेन कै कछु न हाथ। श्लोक। अगम अगाध पार ब्रह्म सोए, जो जो कहे सो मुक्ता होए। सुन मीता नानक बिनवंता, साध दिना की अचर्ज कथा अष्टपदी। साध के संग मुख उजल होत, साध संग मल सगली खोत। साध के संग मिटे अभिमान, साध के संग प्रगटे सुज्ञान। साध के संग बुझे प्रम नेरा, साध संग सब होत निबेरा। साध के संग पाए नाम रत्न, साध के संग एक ऊपर जतन। साध की महिमा वर्णे कौन प्राणी, नानक साध की शोभा प्रामा है समानी। साध के संग गोचर मिले, साध के संग सदा प्रफुल्ले। साध के संग आवे बसपंचा, साध संग अमृत रस पुंचा। साध संग हुए सब की रेण, साध के संग मनोहर बैण। साध के संग न कथ पावे, साध संग अस्तित मन पावे। साध के संग माया पे भिन्न, साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न। साध संग दुश्मन समीत, साधु के संग महापुनीत। साध संग कस्यो नहीं बैर, साध के संग न बीगा पैर। साध के संग ना ही को मंदा, साध संग जाने परमानंदा। साध के संग ना ही हो ताप, साध के संग तजै सब आप। आपे जाने साध बढ़ाई, नानक साध प्रभु बने आई। साध के संग ना कब हुतावे, साध के संग सदा सुख पावे। साध संग बस अगोचर लहे, साधु के संग अजर सह। साध के संग बसै थान ऊंचा, साधु के संग महल पहुँचा। साध के संग दृढ़ सब धर्म, साध के संग केवल पार ब्रह्म। साध के संग पाए नाम निधान, नानक साधु कह कुर्बान। साध के संग सब कुल उधार है, साध संग साजन मीर कुटुम निस्तार है। साधु के संग सो तन पावे, जिस तन ते सब को वरसावे। साध संग धर्म राय करे सेवा, साध के संग शोभा सुर देवा। साधु के संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन। साध के संग सर्वथान गम, नानक साध के संग सफल जन्म। साध के संग नहीं कटकाल, दर्शन पेटत होत निहाल। साध के संग कलूख हरय, साध के संग नरक पर हरय। साध के संग इहां उहां सुहेला, साध संग बिछड़त हर मेला। जो इच्छा सोई फल पावे, साध के संग न मिर्था जावे। पार ब्रह्म साध हृदय बसै, नानक उधरै साध सुन रसै। साध के संग सुनो हर नाव, साध संग हर के गुण गाओ। साध के संग न मन पे बिसरै, साध संग सर पर निस्तरै। साध के संग लगै प्रा मीठा, साधु के संग काटा डीठा। साध संग पै आज्ञाकारी, साध संगत पै हमारी। साध के संग मिटै सब रोग, नानक साध पेठे संजोग। साध की महिमा वेद न जाने, जेता सुने तेता बखियाने। साध की उपमा ते गुण ते दूर, साध की उपमा रही प्रकूर। साध की शोभा का ना ही अंत, साध की शोभा सदा व्यंत। साध की शोभा ऊंचते ऊंची, साध की शोभा मूचते मूची।

नानक गर्भ गले अष्टपदी जिसके अंतर राज अभमान सो नरक पापी होवत स्वान जो जाना मैं जो बनवंत सो होवत विष्टा काजन आपस को कर्मवंत कहावे जन्म मरह बहुजोन प्रमावे तन भूमिका जो करे गुमान सो मूर्ख अंधा अज्ञान कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे नानक इहा मुक्त आगे सुख पावे धनवंता हुए कर गुरबावे त्रिन समान कर संग न जावे बहु लश्कर मानक ऊपर करे आस पल भीतर ताका हुए विनाश सब ते आप जाने बलवंत खिनमह हुए जाए पसमंत किसे ना बदे आप अहंकारी धर्म राय तिस करे खुआरी गुर प्रसाद जाका मिटे अभिमान सो जन नानक दरगह प्रमाण कोट कर्म करे हो तारे शर्म पावे सगले बिरथारे अनक तपस्या करे अहंकार नरक सुरक फेर फेर अवतार अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवे हर दरगह को कैसे गवे आपस को जो भला कहावे जिसे भलाई निकट न आवे सर्व की रेन जाका मन होए कहो नानक ताकि निर्मल सोए जब लग जाने मुझते कछ होए तब इसको सुख ना ही कोए जावे जाने मैं किस करता तब लग गुरु जोन मैं फिरता जब तारे को बैरी मीत तब लग नहीं चलना ही चीत जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म राय देश जाए प्रभ कृपा ते बंधन टूटै गुर प्रसाद नानक हो छूटै सहस कटे लाखो उठतावे तृप्त ना आवे माया पाछे पावे अनक भोग बिख्या के करे नह तृप्तावे खप खप मरे बिना संतोख नहीं को राजै सुपन मनोरथ बिरथे सब काजै नाम रंग सर्व सुख होए बडभागी किसै प्राप्त होए करण करावन आपे आप सदा सदा नानक हर जाप करण करावन करने हार इसके हाथ कहाँ विचार जैसी दृष्ट करे तैसा होए आपे आप आप प्राप्त होए जो किस कीनो सो अपने रंग सब ते दूर सब हूँ कै संग बुझ है देखे करे विवेक आप है एक आप है अनेक मरे ना बिन सह आवे ना जाए नानक सद ही रह समाए आप उपदेश समझे आप आपे रचिया सब कै साथ आप कीनो आपन विस्तार सब कछ उसका करने हार उसते भिन्न कहूँ के छोए थान समंतर एक कै सोए अपने चलते आप करने हार कौतक रह रंग अपार मन में आप मन अपने माहे नानक कीमत कह न जाए सत सत सत प्रभु स्वामी गुर प्रसाद किने वखियानी सच सच सच सब कीना कोट मधह किने बिरले चीना पला पला पला तेरा रूप अत सुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी घट घट सुनी श्रवण मुखियानी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपै नानक मन प्रीत श्लोक संत शरण जो जन परै सो जन उधरन हार संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार अष्टपदी संत के दुखन आर जा कटै संत के दुखन जानते नहीं छुटै संत के दुखन सुख सब जाए संत के दुखन नरक में पाए संत के दुखन मत होए मलीन संत के दुखन शोभाते हीन संत के हते को रखे ना कोए संत के दुखन थान प्रष्ट होए संत कृपाल कृपा जे करै नानक संत संग निंदक पीतर है संत के दुखन ते मुख पवै संतन कै दुखन काग ज्यों लवै संतन कै दुखन सर्प जोन पाए संत कै दुखन त्रिग्द जोन किरमाए संतन कै दुखन तृष्णा मह जलै संत कै दुखन सब को छलै संत कै दुखन तेज सब जाए संत के दुखन नीच नीचाए संत दुखी काथाओं को नाहे नानक संत पावै ता ओए पीगत पाहे संत का निंदक महा अस्ताई संत का निंदक खिनटकन्ना पाई संत का निंदक महा हत्यारा संत का निंदक परमेश्वर मारा संत का निंदक राज देहीन संत का निंदक दुखिया आर्दीन संत के निंदक को सर्व रोग संत के निंदक को सदा विजोग संत की निंदा दोख मह दोख नानक संत पावे ता उसका पी होए मोख संत का दुखी सदा अपवित संत का दुखी किसे का नहीं मित संत के दुखी को दान लाग गए संत के दुखी को सब त्याग गए संत का दुखी महा अहंकारी संत का दुखी सदा विकारी संत का दुखी जन्म मरे संत की दुखना सुख ते तरे संत के दुखी को ना ही ठाओ नानक संत पावे ता लय मिलाए संत का दुखी अद बीच ते टूटे संत का दुखी कितै काज ना पहुँचे संत के दुखी को ध्यान परमाई है संत का दुखी उजड़ पाई है संत का दुखी अंतर तीर्थो था ज्यो सास बिना मृतक की लोथा संत के दुखी की जड़ किछ नाहे अपन बीज आपे ही खाहे
संत के दोखी को अवर ना राखन हार। नानक संत पावै तां लहे उबार। संत का दोखी इउं बिलाए ज्यों जाल बिहून मछली तड़फड़ाए। संत का दोखी भूखा नहीं राजै ज्यों पावक ईंधन नहीं त्रापै। संत का दोखी छुटै अकेला ज्यों बुआर तेर खेत माहे दुहेला। संत का दोखी धर्म ते रहत संत का दोखी सद मिथ्या कहत। किरत निंदक का तुरही पया नानक जो तिस पावै सोई थिया। संत का दोखी बिगड़ रूप होए जाए संत के दोखी को दरगह मिले सजाए। संत का दोखी सदा सहकाई है संत का दोखी ना मरै ना जिवाई है। संत के दोखी की पूजै ना आसा संत का दोखी उठ चले निराशा। संत का दोख ना तृष्टै कोय जैसा पावै तैसा कोई होए। पया किरत ना मिटै कोय नानक जाने सच्चा सोए। सब घट तिसके ओह करने हार सदा सदा तिसको नमस्कार। प्रभ की उस्तत करो दिन रात तिसै ते आवो सास ग्रास। सब कछ वरतै तिसका किया जैसा करे तैसा को थिया। अपना खेल आप करने हार दूसर कौन कहे विचार। जिसनों कृपा करै तिसे अपन नाम दे बड़ पागी नानक जन से। श्लोक तजहो से आन सुरजन हो सिमरहो हर हर राय। एक आस हर मन रखो नानक दुख परम पहु जाए। अष्टपदी मानस की टेक बिरथी सब जान। देवन को एक कह भगवान जिस कह दिया रह अघाए। बहुर न तृष्णा लाग आए मारे राख एको आप। मानुष कह किसना ही हाथ जिसका हुक्म बूझ सुख होए। तिसका नाम रख कंठ परोए सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए। नानक विघ्न ना लागे कोए उस्तत मन में कर निरंकार। कर मन मेरे सत व्यवहार निर्मल रसना अमृत पियो। सदा सुहेला कर लह जियो नहनो पेख ठाकुर का रंग। सार संग बिनसै सब संग चरण चलो मार गोविंद। मिटह पाप जपिय हर बिंद कर हर कर्म श्रवण हर कथा। हर दरगह नानक उजल मथा बड भागी ते जन जग माहे। सदा सदा हर के गुण गाहे राम नाम जो करह विचार। ते तनवंत गणी संसार मन तन मुख बोले हर मुखी। सदा सदा जानो ते सुखी एको एक एक पछाने। इत उसकी ओसो जी जाने नाम संग जिसका मन मानिया। नानक तिन्हें निरंजन जानिया गुर प्रसाद आपन आप सूझ है। तिसकी जानो तृष्णा बुझ है साध संग हर हर जस कहत। सर्व रोग ते ओह हर जन रहत अंदन कीर्तन केवल बुख्यान। ग्रिस्त में सोई निर्वाण एक ऊपर जिस जम की आसा। जिसकी कटिया जम की फांसा पार ब्रह्म की जिस मन भूख। नानक तिसे न लागे दुख जिसको हर प्रभ मन चितावै। सो संत सुहिला नहीं डुलावै जिस प्रभ अपना कृपा करै। सो सेवक कहो किस ते डरै जैसा सा तैसा दृष्ट आया। अपने कार्य में है आप समाया सोधत सोधत सोधत सी गया। गुर प्रसाद तत् सब बुझिया जब देखो तब सब किस मूल। नानक सो सूखम सोई अस्थूल नह किस जन्मै नह किस मरै।

अवर त्याग तू तिथै चितार। जो कछ करे सोई सुखमान, भूला काहे फिरे अजान। कौन बस आई तेरे संग, लभत रहे हो रसलो भी पतंग। राम नाम जप हृदय माहे, नानक पाप सेती कर जाहे। जिस वखर को लैन तू आया, राम नाम संतन कर पाया। तज अभिमान ले हो मन मोल, राम नाम हृदय महतोल। लाद खेप संत संचार, अवर त्याग विख्या जंजाल। तन तन कह सब कोए, मुख उजल हर दरगह सोए। यह व्यापार विरला व्यापार है, नानक तां कह सब बलिहार है। चरण साध के तोए तोए पियो, अक साध को अपना जियो। साध की तूर करो स्नान, साधु पर जाइए कुर्बान। साध सेवा वडभागी पाई है, साध संग हर कीर्तन गाई है। अनक बिघनते साधु राख है, हर गुण गाए अमृत रस चख है। ओट दही संत दर आया, सर्व सुख नानक ते पाया। मृतक को जीवालनहार, भूखे को देवत आधार। सर्व निधान जाकी दृष्टि माहे, पूर्व लिखे का लहना पाहे। सब किस तिसका ओ करने जोग, तिस बिन दूसर होवा ना होग। जप जन सदा सदा दिन रैणी, सब ते ऊच निर्मल एक करनी। कर कृपा जिसको नाम दिया, नानक सो जन निर्मल थिया। जाके मन गुर की प्रतीत, तिस जन आवे हर प्रचीत। भगत भगत सुनिया तेह लोए, जाके हृदय एको होए। सच करनी सच ता की रहत, सच हृदय सतमुख कहत। साची दृष्ट साचा आकार, सच वर्तै साचा पासार। पार ब्रह्म जिन सच कर जाता, नानक सो जन सच समाता। श्लोक। रूप न रेख न रंग किछ, त्रिह गुण ते प्रभ भिन्न। तिसै बुझाए नानका, जिस होवै सो प्रसन्न। अष्टपदी। अवना सीतरा मन में राख, मानुक की तू प्रीत त्याग। तिसे परह नाए किछ कोए, सर्व निरंतर एको सोए। आपे बिना आपे दाना, गहर गंभीर गहीर सुजाना। पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद, कृपा निधान दयाल बख्शंद। साथ तेरे की चरणी पाऊं, नानक कै मन एह अनराओ। मनसा पूर्ण सरना जोग, जो कर पाया सोई होग। हरण भरण जा का नेत्र फोर, तिस का मंत्र ना जाने होर। आनंद रूप मंगल सब जा कै, सर्व थोक सुनिय करता कै। राज मह राज जोग मह जोगी, तप मह तपीश्वर ग्रिस्त मह भोगी। त्याय त्याय भगतें सुख पाया, नानक तिस पुरुष का कने अंत ना पाया। जाकी लीला की मित नाही, सगल देव हारे अवगाहे। पिता का जन्म के जाने पूत, सगल पुरोही अपने सूत। सुमत ज्ञान ध्यान जिंदे, जन दास नाम ध्यान से। तेह गुण में जाको प्रमाए, जन्म मरे फिर आवे जाए। ऊंच नीच तिसके स्थान, जैसा जनावे तैसा नानक जान। नाना रूप नाना जाके रंग, नाना पेख करें एक रंग। नाना विद कीनो विस्तार, प्रभ नासी एक अंकार। नाना चलत करे खिन माहे, पूर रहो पूरन सब ठाए। नाना विद करबंत बना।

कर कृपा अंतर उधार पाष्ट प्रेत मुग्ध पात्र कौतार सर्व रूप का औखद नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम काहू जुगत के तह न पाइया धर्म नानक तिस मिलाए जिस लिखिया तुर कर्म जिस कर मान पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सत रामदास आत्म राम तिस नदरी आया दास दसंतन पाए तन पाया सदा निकटो निकट हर जान सो दास दरगा प्रवान अपने दास को आप कृपा करे इस दास को सब सो जी भर सगल संग आत्म उदास ऐसी जुगत नानक रामदास प्रभु की आज्ञा आत्म हितावे जीवन मुक्त सो कहावे तैसा हरख तैसा उस सोगा सदा आनंद तह नहीं बयोग तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी तैसा अमृत तैसी बेखाटी तैसा मान तैसा अवमान तैसा रंग तैसारा ज्ञान जो वरताई साई जुगत नानक पुरख कही है जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठाओ जत जत कर राख तैसा दिन नाओ आपे करन करावन जोग प्रभु पावे सोई फुन होग फसलो आप हो अणत तरंग लखे न जाए पार ब्रह्म के रंग जैसी मत दे तैसा प्रगास पार ब्रह्म करता विनाश सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक पै निहाल श्लोक उस्त कर अनेक जन अंत न पारावार नानक रचना प्रवरची बहुविध अनक प्रकार अष्टपति कई कोट होए पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट पै तीर्थवासी कई कोट बन परमादासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तभी स्रोते कई कोट आत्म ध्यान धारे कई कोट कव का विचारे कई कोट नवतन नाम त्यावे नानक करते का अंत न पावे कई कोट पै अवमानी कई कोट अंध अज्ञानी कई कोट कृपन कठोर कई कोट अपेग आत्म निकोर कई कोट पर धर्म को रहे कई कोट पर दुख न करें कई कोट माया आश्रम माहे कई कोट पर देश परमाए जित जित लाभ हो जित तित लगना नानक करते की जाने करता रचना कई कोट सिद्ध यदि योगी कई कोट राज रस भोगी कई कोट पंखी सर्प पाए कई कोट पाथर बिरखन पजाए कई कोट पवन पानी बैसंतर कई कोट देश भूमंडल कई कोट शशिहर सूर नक्षत्र कई कोट देव दानव इंद्र सर शतर सगल समग्री अपने सूत तारे नानक जिस जिस भाव है तिस तिस ने सतारे कई कोट राजस्तम सातक कई कोट वेद प्राण सिमर तर सासद कई कोट की रतन संबंध कई कोट नाना प्रकार जंत कई कोट किए चर जीवे कई कोट गिरी में स्वरण थीवे कई कोट जाख किनर पसाच कई कोट भूत प्रेत सुकर मृगाच सब ते नेरा सब हूते दूर नानक आप अलिपत रहया भरपूर कई कोट पाताल के वासी कई कोट नरक सुर्ग निवासी कई कोट जन्म जीव मरे कई कोट बोजोनी फिराए कई कोट बैठ दी खाए कई कोट का लय तक पाए कई कोट की है धनवंत कई कोट माया में चिंत जह जय पाणा तह तह रखे नानक सब किस प्रभु के हाथे कई कोट पै बैरागी राम नाम संग तन लव लागी कई कोट प्रभु कौ खो जानते आत्म महे पार ब्रह्म लहंते कई कोट दर्शन प्रभु प्यास तिनको मिलो प्रभु अविनाश कई कोट मांग है सतसंग पार ब्रह्म तिन लागा रंग कई कोट होए आप प्रसन्न जिनको होए आप सो प्रसन्न नानक ते जन सदा तन तन कई कोट खानी अरखंड कई कोट आकाश ब्रह्मांड कई कोट होए अवतार
कई जगत के नौ विस्तार, कई बार पसरो पसार, सदा सदा एक एक अंकार, कई कोट की ने बात प्रभते हुए प्रभु माहि समात, का अंत न जाने कोई आपे आप नानक प्रभु सोए, कई कोट पार ब्रह्म के दास तन हो त्यातम प्रगास, कई कोट सत के बेते सदा निहारे को नेत्रे, कई कोट नाम रस पीवे अमर पय सत सद ही जीवे, कई कोट नाम गुण गावे आत्मरास सुख सह समावे, अपने जन को सास सास तुम्हारे नानक ओए परमेश्वर के प्यारे। श्लोक कारण कारण प्रभु एक है दूसर नाही कोए, नानक जस बलहारण जाल थाल महियल सोए। अष्टपदी कारण करावन करने जोग जो तस भावे सोई योग, खिन मैं था पो था पनहार अंत नहीं किस बार हवार, हुक्मे तार उतर रहावे हुक्मे उपजे हुक्म समावे, हुक्मे ऊच नीच व्यवहार हुक्मे अनक रंग प्रकार, कर कर देख अपनी वड़ियाई नानक सब में रह समाई, प्रभ पावे मानुख गत पावे प्रभ पावे ता पाथर त्रावे, प्रभ पावे बिन शास्त्र राखे प्रभ पावे ता हर गुण पाखे, प्रभ पावे ता पात उधारे आप करे अपन बिचारे, दोहा श्रेयांका आप स्वामी खिले बिसे अंतर जामी, जो पावे सो कार करावे नानको दृष्टि अवर न आवे, कहो मानुख ते क्या हुई आवे जो तिस पावे सोई करावे, इसका हाथ होए ता सब किछ ले जो तिस पावे सोई करे, अणजानत बिख्या मैं रचै जे जानत अपने आप बचै, भरमे पूला दह दिस धावे निमख माहि चार कुंड फिर आवे, कर कृपा जिस अपनी भगत दे नानक ते जन नाम मिले, खिन मैं नीच कीट को राज पार ब्रह्म गरीब नवाज, जाका दृष्ट कछु न आवे तेस तत्काल दह दिस प्रगटावे, जाको अपनी करे बख्शीस ताका लेखा न गने जगदीश, जियो पिंड सब दिस की रास खट खट पूर्ण ब्रह्म प्रगास, अपनी बनत आप बनाई नानक जीव देख वडाई, इसका बाल नाही अथास कर्ण करावन सर्व को नाथ, आज्ञाकारी बपरा जियो जो तिस पावे सोई फुन थियो, कब हूँ ऊंच नीच मह बसै कब हूँ सोग हरख रंग हसै, कब हूँ निंद चंद व्यवहार कब हूँ उब आकाश पयाल, कब हूँ बेता ब्रह्म विचार नानक आप मिला बनहार, कब हूँ मृत करह बहुपांत कब हूँ सोई रह दिन रात, कब हूँ महाक्रोध विकराल कब हूँ सर्व की होत रवाल, सा कब हूँ होए बह बड़ राजा कब हूँ पेखारी नीज का साजा, कब हूँ अपकीर्त मह आवे कब हूँ पला पला कहवे, ज्यो प्रभ राखै तिब ही रह गुर प्रसाद नानक सच कहे, कबहू होए पंडित करे बकयान कबहू मोन तारी लावे ध्यान, कबहू तट तीर्थ स्नान कबहू साध सिद्धक कबहू सिद्ध साधक मुख ज्ञान, कबहू कीट हस्त पतंग होए जिया अनक जोन परमै परमिया, नाना रूप जो स्वांगी दिखावे जो प्रभ पावे तिवै नचावे, जो तिस पावे सोई होए नानक दूजा वरना कोए, कबहू साध संगत हे पावे उस स्थान ते बौर न आवे, अंतर होए ज्ञान प्रगास उस स्थान का नहीं विनाश, मन तन नाम रति एक रंग सदा बसे पार ब्रह्म का संग, ज्यों जल में जल आए खटाना त्यों ज्योति संग ज्योत समाना, मिट गए गमन पाए विश्राम नानक प्रभु कै सद कुर्बान। श्लोक सुखी बसै मसकीनिया आप निवार तले, बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले। अष्टपदी जिसका अंतर राज अपमान सो नरक पाती होवत सुवान, जो जाने मैं जो बनवंत सो होवत बिष्टा का जंत, आपस को कर्मवंत कहावे जन्म मरै बो जोन परमावे,
ਧਨ ਭੂਮਿਕਾ ਜੋ ਕਰੇ ਗੁਮਾਨ ਸੋ ਮੂਰਖਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕਾ ਹਿਰਦੈ ਗਰੀਬੀ ਵਸਾਵੇ ਨਾਨਕ ਇਹਾਂ ਮੁਕਤ ਆਗੈ ਸੁਖ ਪਾਵੇ ਧਨਵੰਤਾ ਹੋਏ ਕਰ ਗਰਵਾਵੇ ਤ੍ਰਿਣ ਸਮਾਨ ਕਸ ਸੰਗ ਨ ਜਾਵੇ ਬਹੁ ਲਸ਼ਕਰ ਮਾਨੁਖ ਉਪਰ ਕਰੇ ਆਸ ਪਲ ਭੀਤਰ ਤਾਂ ਕਾ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼ ਸਭ ਤੇ ਆਪ ਜਾਣੈ ਬਲਵੰਤ ਖਿਨਮੈ ਹੋਏ ਜਾਏ ਬਸਮੰਤ ਕਿਸੈ ਨਾ ਬਦੈ ਆਪ ਅਹੰਕਾਰੀ ਧਰਮ ਰਾਏ ਤਿਸ ਕਰੇ ਖੁਆਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਾ ਕਾ ਮਿਟੈ ਅਭਿਮਾਨ ਸੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਰਗਾਹ ਪਰਵਾਰ ਕੋਟ ਕਰਮ ਕਰੇ ਹੋਂ ਤਾਰੇ ਸ਼ਰਮ ਪਾਵੈ ਸਗਲੇ ਬਿਰਥਾਰੇ ਅਨਕ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੇ ਅਹੰਕਾਰ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਫਿਰ ਫਿਰੇ ਅਵਤਾਰ ਅਨਕ ਯਤਨ ਕਰ ਆਤਮ ਨਹੀਂ ਦਰਬੈ ਹਰ ਦਰਗਾਹ ਕਉ ਕੈਸੇ ਗਾਵੈ ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਭਲਾ ਕਹਾਵੈ ਤਿਸੈ ਭਲਾਈ ਨਿਕਟ ਨ ਆਵੈ ਸਰਬ ਕੀ ਰੇਂਜਾ ਕਾ ਮਨ ਹੋਏ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ ਜਬ ਲਗ ਜਾਣੈ ਮੁਝ ਤੇ ਕਛ ਹੋਏ ਤਬ ਇਸ ਕੋ ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਕੋਏ ਜਬ ਇਹ ਜਾਣੈ ਮੈਂ ਕਿਛ ਕਰਤਾ ਤਬ ਲਗ ਗਰਭ ਜੋਨ ਮੈਂ ਫਿਰਤਾ ਜਬ ਤਾਰੇ ਕੋ ਬੈਰੀ ਮੀਤ ਤਬ ਲਗ ਨੇ ਚਲ ਨਾਹੀ ਚੀਤ ਜਬ ਲਗ ਮੋਹ ਭਗਨ ਸੰਗ ਮਾਏ ਤਬ ਲਗ ਧਰਮ ਰਾਏ ਦੇ ਸਜਾਏ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਬੰਧਨ ਟੂਟੈ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਹਾਂ ਛੂਟੈ ਸਹਿਸ ਖੱਟੇ ਲਖ ਕੌਠ ਦਾਵੈ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾਵੈ ਮਾਇਆ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ ਅਨਕ ਭੋਗ ਵਿਖਿਆ ਕੇ ਕਰੈ ਨੈ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ ਗਬ ਗਬ ਮਰੈ ਬਿਨਾ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕਉ ਰਾਜੈ ਸੁਪਨ ਮਨੋਰਥ ਬਿਰਥੇ ਸਭ ਕਾਜੈ ਨਾਮ ਰੰਗ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਏ ਵਡਭਾਗੀ ਕਿਸੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਆਪੇ ਆਪ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਹਰ ਜਾਪ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਇਸ ਕਰ ਹਾਥ ਕਾਮ ਵਿਚਾਰ ਜੈਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰੇ ਤੈਸਾ ਹੋਏ ਆਪੇ ਆਪ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਜੋ ਕਿਛ ਕੀਨੋ ਸੋ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਸਭ ਤੇ ਦੂਰ ਸਭੂ ਕੈ ਸੰਗ ਬੂਝੈ ਦੇਖੈ ਕਰੇ ਵਿਵੇਕ ਆਪਣੇ ਏਕ ਆਪਣੇ ਅਨੇਕ ਅਮਰੈ ਨਾ ਬਿਨਸੈ ਆਵੈ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸਦ ਹੀ ਰਹੇ ਸਮਾਏ ਆਪ ਉਪਦੇਸ਼ੈ ਸਮਝੈ ਆਪ ਆਪੇ ਰਚਿਆ ਸਭ ਕੈ ਸਾਥ ਆਪ ਕੀਨੋ ਆਪਣ ਮਿਸਾਰ ਸਭ ਕਛ ਉਸ ਕਹੋ ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਉਸ ਤੇ ਤਿੰਨ ਕਹੋ ਕਿਛ ਹੋਏ ਥਾਨ ਥਨਾਂਤਰ ਕੈ ਸੋਏ ਆਪਣੇ ਚਲ ਤੇ ਆਪ ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਕੌਤਕ ਕਰੈ ਰੰਗ ਅਪਾਰ ਮਨ ਮਹਿ ਆਪ ਮਨ ਆਪਣੇ ਮਾਹੇ ਨਾਨਕ ਕੀਮਤ ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਏ ਸਤ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਨੇ ਵਖਿਆਨੀ ਸੱਚ ਸੱਚ ਸੱਚ ਸਭ ਕੀਨਾ ਕੋਟ ਮਧਿਆ ਕਿਨੇ ਬਿਰਲੈ ਚੀਨਾ ਭਲਾ ਭਲਾ ਭਲਾ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਅਪਾਰ ਰੂਪ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਘੱਟ ਘੱਟ ਸੁਣੀ ਸਰਵਣ ਵਖਿਆਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਨੀਤ ਨਾਮ ਜਪੈ ਨਾਨਕ ਮਨ

संत की निंदा नानका भौर भौर अवतार अस्पदी संत के दुखन आर जा कटे संत के दुखन जमते नहीं छुटे संत के दुखन सुख सब जाए संत के दुखन नरक में पाए संत के दुखन मत होए मलीन संत के दुखन सो बातें हीन संत के हते को रखे न कोई।

समाई, इसे ऐसो नहीं बुरा और कहो किने कछ करा। आप ला कर तू आत्मी की, आपे जाने अपने जी की। आप साच सारी सब साच, होत बोत अपन संग्राच। ताकि गत में तो कहीं न जाए, दूसर होए तो सो जी पाए। जिसका किया सब प्रवान, गुरु प्रसाद नानक के जान। जो जाने ते सदा सुख होए, आम लाए लाए प्रभ सोए। ओ तनवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुक्त जस हृदय भगवंत। तन तन तन जन आया, जस प्रसाद सब जग सतराया। जानया उनकाए सवाओ, जान के संग चित आवे नाओ। आ मुक्त मुक्त करे संसार, नानक ते जन को सदा नमस्कार।

0: 玩出去看海山，玩出去看海山，玩出去看海山，玩出去看海山。本次卡耶在哪？在哪？卡格罗罗和安卡。
1: बोले सोले हाय।

0: नाच रैया खुशियां तेरे ते
1: रैया खुशियां तेरे ते रेहा जोबन दमका मार हुंदी पैसी वरका नाम दी
0: पैसी वरका नाम दी।

0: जोरी बच्चे का डर हूं लाल का, तू पिता साडा मैं हाँ तेरा बाल का, उस वेले तू चढ़ाली मैनू मालका, वेले तू चढ़ाली मैनू मालका, जम जदो दिल घूरिया सचे पातशाह मला दे मला तो मलाला किवें मजदूरिया, मलाला किवें मजदूरिया।
1: पानी नदियां